ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तिथि 6, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कैनेडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर

0: यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समय हो गया है कार्यक्रम वंदनवार का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आज का चिंतन सुभाष चंद्र बोस का कथन है, जीवन में कोई भी संघर्ष तब तक कठिन नहीं होता जब तक हम हार नहीं मान लेते। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। झरोखा के अंतर्गत आपको बता दें कि हमारे केंद्र से आज कौन कौन से कार्यक्रम किस समय पर आप सुन सकते हैं।

अब से थोड़ी ही देर बाद 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे 7:00। 7:30 ये समय रहेगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के का। ठीक 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात आप सुनेंगे। कार्यक्रम त्रिवेणी सुनना ना भूलिएगा 8:15 पर, और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू आज का अखबार कार्यक्रम में 9:30 पर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम जो कि लाइव फोन इन रहता है, आज इस कार्यक्रम में बात होगी कच्चे धागे पक्के रिश्ते इस विषय पर। ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 10:05 पर। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनना ना भूलिएगा 11:00।

11:15 पर आप सुनेंगे म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम, जो कि आपकी फरमाइश पर आधारित रहता है। यादों की महफिल कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 12:05 पर। 1:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप उठाएंगे। 1:30 समय रहेगा सुरीला सफर कार्यक्रम का। 2:00 लेकर हाजिर होंगे वंदे मातरम एक जय घोष। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे। 3:00 कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3:00 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। 5:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे। 5:00

पांच मिनट पर फिल्म संगीत का आनंद आप उठाएंगे और 5:20 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत किया जाएगा।

6:30 पर आप सुन सकते हैं अमृत बानी, जयमाला का आनंद आप उठाएंगे 7:00। 7:47 पर पंजाबी गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। 8:00 सुनना ना भूलिएगा हवा महल। 8:15 ये समय रहता है चित्रलोक कार्यक्रम का। कार्यक्रम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। छाया गीत कार्यक्रम सुनेंगे आप 10:00 और 10:32 पर सुर सांझ। तो ये हैं आज हमारे केंद्र से प्रस्तुत किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आप सुनेंगे सुंदर कांड आज भाग 294।

जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्हें जानकी तथा महादेव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज मुझे उन्हीं चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए विभीषण समुद्र के इस पार आते हैं, जिधर श्री राम की वानर सेना के शिविर लगे हुए हैं। वानर समूह ने उन्हें देखा तो शंका हुई, शत्रु का कोई खास दूत उनके बीच आ पहुंचा है। विभीषण को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार, ताल प्रवाह में बहते बहते हम अंतिम कड़ी में आ पहुंचे हैं। आज मिश्रा जी, हमने तालों पर बहुत सारी बातें सुनी, आपने बहुत खूबसूरत बजाया, आपके साथ उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब ने बहुत अच्छी संगत की, और हारमोनियम पर श्री विनोद पड़गे जी ने भी बहुत अच्छी संगति प्रदान की। इस अंतिम कड़ी में हम तबले के ठेके का एक अलग अंदाज देखेंगे। कहरबा तो भजन के साथ बजता है, भजनी ठेका भी एक है, तो मिश्रा जी इसके साथ किस तरह की ठेका बजते इसके बारे में थोड़ा बताइए। और आप कह रहे थे कि इसमें कुछ अलग प्रकार के उड़ान या उठान आते हैं, वो क्या चीज़ है, वो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: भजन का एक ऐसा ठेका है कि आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। आप बहुत अच्छे गायक हैं, मैंने काफ़ी आपके साथ प्रोग्राम भी किया है। मैं चाहता हूं कि अंतिम कड़ी में आप भजन क्यों नहीं सुना रहे, एक भजन गाइए ताकि मैं उसमें अपनी वादन से शुरू करता हूं, और उसमें उड़ान, भजन में एक उड़ान होता है
1: जी,
2: तो वो प्रस्तुत करूंगा। एक भजन कोई गुनगुनाइए आप।
1: कोशिश करूंगा
2: जी।

0: तो ये एक जो भजन का अंदाज है, ये एक जब कभी बजता है या इसको कहीं गाते बजाते हैं तो जो श्रोता होते हैं ना, वो फिर उसमें झूमने लगते हैं, उसमें रम जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि इसका अंदाज ही एक झूमना। तो श्रोताओं, हम अंतिम कड़ी की तरफ पहुंच गए हैं। जैसा कि प्रारंभ में मैंने गणपति वंदना से शुरू किया था अपने तार प्रवाह का, तो समापन भी हम चाहेंगे कि एक आध्यात्मिक रूप। मुझे आज एक गाना याद आ रहा है, बहुत सुंदर रचना है, वो लता दीदी इसको गाई हैं।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी 12वीं और अंतिम कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस पूरी श्रृंखला में श्री कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दिया उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब ने और हारमोनियम पर संगत की श्री विनोद पड़गे ने। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। भोले बिस्तर गीत लेकर बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए पेश है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये गीत अभी आपने सुना नरसी भगत फिल्म से हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे की आवाजों में। जीएस नेपाली का लिखा गीत था, संगीतबद्ध किया था रवि ने।

0: रानी रूपमती इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था SN त्रिपाठी ने।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सती परीक्षा इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। गीतकार दीपक हैं और संगीतकार सन्मुख बाबू।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदें।

0: Indeed.
1: ये गीत मदर इंडिया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
4: नसीब इंसान का।
3: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत सलिल चौधरी की बनाई तर्ज पर मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर। फिल्म का नाम लाल बत्ती।

एसएन त्रिपाठी की तर्ज पर भरत व्यास के लिखे बोल मन्ना डे की आवाज में ये गाना सुनिए, जन्म जन्म के फेरे, इस फिल्म से।

0: हम पंछी एक डाल के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों के स्वरों में। पीएल संतोषी का लिखा गीत था, तर्ज बनाई थी एन दत्ता ने। और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया, कार्यक्रम हम है राही प्यार की। आइए आपको सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की बधाइयों के साथ सुनवा रहे हैं पहला गीत, बेईमान फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

होशियार फिल्म से आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अगला गीत इंदीवर के बोल, तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: अरे सुनो,
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर? किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। रात और दिन इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक

0: शिक्षक और एक प्राध्यापक।
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संदेशों से पहले आपने गीत सुना मेरे हुजूर, इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। और अब झुक गया आसमान इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल और संगीत है शंकर जयकिशन का।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी

0: झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779810326117। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
4: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
5: श्रावण पूर्णिमा के

0: अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
3: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
2: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम 4थे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले। नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के

0: बिजनेस पन्ने की खबर है। गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला AI सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: जय घोष मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
2: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था।

0: इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
1: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है। इसकी स्पष्ट कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
2: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
1: इस प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए, इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
2: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा इसका संदेह था, और यह संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
1: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता

की जाए। इन तीन मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये चौथी मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: अभी आपने सुना देशगान। हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदो।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्तलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आज आपके साथ इस कार्यक्रम में पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह का ये वक्त है मूड को फ्रेश करने का, दिल को थोड़ा हल्का करने का और दिन को अपनी धुन पर शुरू करने का। तो आवाज़ थोड़ी बढ़ा लीजिए और जुड़ जाइए विविध भारती के संग। कार्यक्रम है चित्रलोक, शुरू होने जा रहा है।

कार्यक्रम जटलोक का पहला गीत आपने सुना, एन एक्शन हीरो इस फिल्म से। जहरा एस खान, अल्तमश फरीदी की आवाजें थी, इंदेवर और तनिष्क बागची के बोल, संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। श्रोताओं, आज है 28 अगस्त शुक्रवार और हम मना रहे हैं रक्षाबंधन का पावन पर्व। राखी का यह धागा सदियों से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधती आई हैं। लेकिन क्या यह धागा सिर्फ बहन की रक्षा का वचन है? शायद नहीं, क्योंकि बहन कोई कमजोर कड़ी नहीं जिसे हर पल किसी की रक्षा की जरूरत हो। यह धागा तो दो दिलों के बीच उस प्रेम, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है जो कहता है कि तुम्हारे सुख में मैं साथ हूँ, तुम्हारे दुख में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जी हाँ, रक्षा से कहीं अधिक जरूरत है सम्मान की, बराबरी की, अपनेपन की और एक दूसरे का साथ निभाने की। बहन को केवल सुरक्षित रखने का वचन नहीं बल्कि उसके सपनों, उसकी इच्छाओं और उसके अधिकारों का सम्मान देने का संकल्प भी हो आज के दिन। और भाई बहन का रिश्ता भी ऐसा हो जहाँ दोनों एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की रक्षा नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये गाना।

0: रक्षाबंधन इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया और निहाल तारो की आवाजों में। इरशाद कामिल की रचना थी, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
4: नसीब इंसान का।
3: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्र

0: शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और अब वक्त है एक अंतराल का।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत के बोल लिखे हैं गरिमा ओब्राह ने, हिशाम अब्दुल वहाब का संगीतबद्ध किया गीत है और आवाजें हैं चिन्मयी श्रीपदा और हिशाम अब्दुल वहाब की।

0: श्रोताओं, विश्व संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चूंकि आज है, यह दिवस संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उसके गौरवशाली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, दर्शन और संस्कृति की समृद्ध धरोहर है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मुझे कुछ कहना है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में, समीर के बोल, अनु मलिक की बनाई तर्ज।

0: इंद्रनील का लिखा गीत, सचिन जिगर का संगीत, वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाजों में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत आपने सुना। और अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: अरोड़ा प्लाईवुड,
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं बता दें आपको कि आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर। और आज है नारियली पूर्णिमा। महाराष्ट्र में विशेष रूप से समुद्र तट से जुड़े समुदायों का महत्वपूर्ण पर्व है नारियली पूर्णिमा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र और भगवान वरुण की पूजा कर नारियल अर्पित किया जाता है तथा सुरक्षित समुद्री यात्रा और अच्छी आजीविका की प्रार्थना की जाती है। लक्की फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी के स्वरों में। समीर के बोल, अदनान सामी का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
4: कबीर सिंह इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल के बोल सचेत परंपरा की बनाई धुन।

0: श्रोताओं, बलभद्र पूजा मुख्य रूप से भगवान बलभद्र यानी बलराम की आराधना का पर्व है। बलराम जी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति, पराक्रम, कृषि तथा धरती से जुड़े जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त बलभद्र जी की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बलराम जी का हल उनका प्रमुख प्रतीक है, इसलिए यह पर्व कृषि, श्रम और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त एक अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल, इस फिल्म का गीत मीट ब्रदर्स और अल्तमश फरीदी की आवाजों में। शब्बीर अहमद के बोल हैं और धुन बनाई है मीट ब्रदर्स ने।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं पीकू फिल्म से गीत। इस गीत के संगीतकार, गीतकार और गायक कलाकार अनुपम रॉय हैं।

0: जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बधाइयाँ, और आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
7: 10 साल का

0: एब्रेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे।
1: लीजिए पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार।
1: श्रोताओं, आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जिंदगी भी बड़ी कमाल की चीज है। कभी सुबह की पहली किरण बनकर मुस्कुराती है तो कभी शाम के आसमान में इंद्रधनुष बनकर हमें समझाती है कि बारिश के बाद रंग भी आते हैं। आज का हमारा सफर 2 अलग अलग अवसरों को एक साथ लेकर चल रहा है, पहला गायत्री जयंती और दूसरा इंद्रधनुष पुल स्मरण दिवस यानी रेनबो ब्रिज रिमेम्बरेंस डे। एक और गायत्री मंत्र की आध्यात्मिक रोशनी है जो हमारी बुद्धि को सही दिशा देने की प्रार्थना करती है, और दूसरी ओर रेनबो ब्रिज रिमेम्बरेंस डे उन पालतू साथियों को याद को समर्पित रहता है जो हमारे जीवन में परिवार के सदस्य की तरह आए और फिर हमें अपनी यादों के रंग देकर चले गए। कहते हैं इंसान के पास यादों की भी एक अलमारी होती है, फर्क बस इतना है कि उसमें कपड़े नहीं, चेहरे, आवाजें, खुशबू और भावनाएं रखी होती हैं। और पालतू जानवरों की याद, भाई उसका क्या, अरे साहब उनकी तो अलग ही अलमारी होती है जिसमें सोफा उनका, बिस्तर उनका, रिमोट पर कब्जा उनका और घर में प्यार का सबसे बड़ा हिस्सा भी उनका। यही तो रिश्तों की खूबसूरती है, कुछ रिश्ते बोलकर नहीं महसूस होकर बनते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि किसी जीव के साथ बिताया समय छोटा हो सकता है लेकिन उसके द्वारा छोड़ी गई याद बहुत लंबी होती है।

भाई क्या बात है, रिश्तों की एक और दुनिया है जिसे आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। रिश्तों की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें प्यार भी होता है और अधिकार भी, और थोड़ी सी शिकायत के साथ ढेर सारी नोकझोंक। बात हो रही है भाई बहन के प्यार से भरे रिश्ते की, जो बचपन से एक दूजे के साथ अपनी हर खुशी हर गम बांटते हैं, एक दूजे की खूबियां और कमियां भी पहचानते हैं। खुद भले ही एक दूजे से नाराज हों, पर कोई तीसरा इस रिश्ते को कोई कुछ कह दे तो भाई उसकी फिर खैर नहीं। इस रिश्ते को और भी मजबूत करता है रक्षाबंधन का त्योहार, और आज ये पर्व हर घर में बड़ी खुशी से मनाने की तैयारी भी चल रही होगी। तो इस अवसर पर आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रिश्ता यूं ही मुस्कुराता रहे, नोकझोंक यूं ही चलती रहे, कलाई पर राखी यूं ही सजती रहे, और भाई बहन की ये प्यारी सी कहानी हर साल नए रंगों में खिलती रहे।

0: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: आज का अखबार कार्यक्रम में अब रुख करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बच्चों के लिए नया ग्रोथ स्टैंडर्ड कर रहा तैयार। इसके लिए 2 से 18 साल के बच्चों का किया जा रहा अध्ययन। 5 पैमानों से तय होगा बच्चा कितना स्वस्थ। यूपी को स्टार्टअप का गढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति 2026 में स्टार्टअप को 40 करोड़ तक मदद करेगी केंद्र सरकार। वर्ष 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज, भारत में नहीं दिखेगा साया इसका। ब्रिक्स सम्मेलन दिल्ली में 12 सितंबर को, दिखेगी नई वैश्विक तस्वीर, भारत साधेगा कूटनीति समीकरण।

ब्राजील के बाद दो बार के विश्व चैंपियन उरुग्वे से भिड़ेगा भारत। भारतीय फुटबॉल टीम का सितंबर अक्टूबर में तीन विश्व कप टीमों से सामना। आज हांगकांग वर्सेस थाईलैंड रात 8 बजे से। महिला एशिया कप पहली बार दुबई में, 8 टीमें इसमें खेलेंगी। सीजीआई ने जर्मनी के कार्लसरुए स्थित फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज उल्रिच हेरमान के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा, भारतीय न्यायपालिका एआई का इस्तेमाल, कानूनी शोध, फैसलों के 16 भाषाओं के अनुवाद और नागरिकों को मामलों की स्थिति जानने में कर रही है। जर्मनी में एक साल में 17.5% बढ़े भारतीय छात्र, विदेशी छात्रों में पहले नंबर पर। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें।

श्रोता ख्वाहिशें हमारी भी बहुत सी हैं कि आपको ये गीत सुनवाते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए गीत नहीं, हमारे पास और भी बहुत कुछ है आपके पास। अब आपके लिए रुख करते हैं क्षेत्रीय खबरों की ओर। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग में तैनात एक्सटेंशन लेक्चरर्स का वेतन रोकने के दिए आदेश रद्द किए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 713 करोड़ की योजना का बिडिंग प्रोसेस किया शुरू। पंजाब से प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग अमृतसर जामनगर हाईवे के 24 किलोमीटर के लंबे मिसिंग लिंक पर बनेगी 4-लेन रोड। पंजाब से सफर में रोजाना 13 घंटे बचेंगे। हरियाणा सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित शिक्षकों की सूची की जारी। हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे अनुबंध कर्मियों की सेवा अवधि 2 माह और बढ़ी। एक सितंबर से 24 घंटे बंद रहेंगी आयुष्मान सेवाएं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों के 6 पदों को भरने के लिए मांगे आवेदन। 16 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। हिमाचल में 31 अगस्त से फिर भारी बारिश का दौर। 70 सड़कें अभी भी बंद हैं। तो आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी क्षेत्रीय खबरें।

नगर निगम चुनाव के लिए यूटी प्रशासन ने 35 वार्डों की संख्या बरकरार रखते हुए रिजर्वेशन फॉर्मूले की नोटिफिकेशन की जारी। 7 वार्ड SC और 12 महिलाओं के लिए होंगे रिजर्व। यूटी चंडीगढ़ की स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशन में 12 सितंबर को लोक अदालत लगाई जाएगी। कॉलेज बैंक से स्कूल तक पहुंचा PGI का नेत्रदान अभियान, 74 स्टूडेंट्स ने बनाए पोस्टर। चुनाव के अगले दिन 1 सितंबर को भी खुलेगा PU।

रक्षाबंधन पर महिलाएं ट्राईसिटी में लोकल बसों में करेगी मुफ्त सफर। राखी पर इस बार चार शुभ संयोग। सुबह का मुहूर्त सबसे खास। सुबह 5:57 से 9:48 तक राखी बांधने का समय श्रेष्ठ। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते सितंबर में फिर बदलेंगे ट्रेनों के प्लेटफॉर्म। 15 दिन चलेगा निर्माण कार्य। प्लेटफॉर्म वार ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा शिफ्ट। गत वीरवार को बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी से नहीं मिल सकी राहत। 35.9 तापमान के साथ 94% तक पहुंची अधिकतम आर्द्रता। 31 तक गरज चमक के साथ बारिश के आसार। तो आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी स्थानीय खबरें।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अब बात करते हैं खेल जगत की। एक बार फिर से आपसे राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के आखिरी बार भारतीय टीम में एक साथ खेलने के 14 साल बाद अब दोबारा टीम शीट पर उनका नाम दिखेगा। राहुल के बेटे अन्वय द्रविड़ के बाद अब वीरेंद्र के बेटे आर्यवीर सहवाग को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की अंडर 19 टीम में लिया गया है और 18 वर्षीय आर्यवीर की ये पदार्पण सीरीज रहेगी। पिछले महीने श्रीलंका दौरे पर ये चुने गए और 17 वर्षीय अन्वय ने टीम में जगह बरकरार रखी है।

0: आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज का अखबार।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। बचावकर्मी नदी के किनारों और अलग अलग पड़ी बस्तियों में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं और शवों को निकाल रहे हैं। अभी क्षेत्र में खतरा टला नहीं है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के

0: स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल को बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। श्रीलंका की नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक संबंधों को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का निरंतर वाहक रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कामना की है कि खुशियों का ये त्योहार प्यार, स्नेह और एकजुटता के बंधन को मजबूत करे और सभी को दया, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। राजस्व सूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम ड्रग्स संबंधी दवाएं जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली कड़कने की आशंका तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: सिर्फ 1 रुपए में बीएसएनएल का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाएं।
4: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
3: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
4: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं बीएसएनएल।
5: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर

आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़.
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी.
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ.
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं.
3: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी.
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070.
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का.

भाई ये जज्बात तो आज के दिन सभी भाई बहनों की जुबान पर होंगे। पूरा साल भले ही एक दूसरे की जी भर के टांग खींची हो, लेकिन आज के दिन भाई बहन के प्यार का घड़ा कुछ ज्यादा ही छलकता है। भाई ऐसा हो भी क्यों ना, रिश्तों की डोरी को और ज्यादा मजबूत करता है रक्षाबंधन का त्योहार। तो आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोनिका ठाकुर हाजिर हो गई है आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। हेलो चंडीगढ़। दोस्तों, राखी का धागा बहुत साधारण होता है, उसकी कीमत शायद कुछ रुपए हो, लेकिन जब वही धागा किसी अपने की कलाई पर बंधता है तो उसकी कीमत रुपयों में नहीं की जाती। उसमें बचपन की शरारतें होती हैं, साथ बिताए त्योहार होते हैं, छोटी

0: छोटी लड़ाइयां होती हैं और मुश्किल समय में दिया गया साथ और एक अनकहा सा विश्वास होता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही रक्षाबंधन की असली खूबसूरती है। तो आज राखी बांधते समय सिर्फ एक तस्वीर आप सोशल मीडिया के लिए मत खिंचवाइए, एक याद अपने दिल के लिए भी बनाइए, क्योंकि तस्वीरें फोन की मेमोरी में रहती हैं और रिश्ते हमारी जिंदगी की मेमोरी में। तो जब आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा के लिए धागा बांधती हैं तो इस धागे के मायने क्या रहते हैं, आज का विषय यही है। कच्चे धागे पक्के रिश्ते, कितना पक्का रहता है लड़ाई होने के बावजूद भी ये रिश्ता, यही हम आपसे जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। ये है लाइव फोन इन प्रोग्राम और अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, दूसरा फोन नंबर है 2660617 और 2660619, एसटीडी कोड है 0172। हमेशा की तरह हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहता है और जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है जो फ़ोन लाइन है वो ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है। तो शामिल करते हैं कार्यक्रम में पहला कॉल। जी नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला चार सेक्टर से।
0: बेदी जी, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई आपको।
1: आपको भी। देखो मैं खाली भाइयों का तो मानती नहीं है, मैं एक रक्षा सूत्र मानती हूँ इसको
0: जी।
1: तो मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी बेटी है जी, मेरा छोटा बेटा है, इन सब के लिए एक रक्षा सूत्र देती हूँ मैं।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छे।
1: हम एक दूसरे की रक्षा करें, जरूरी नहीं है भाई रक्षा करे
0: जी।
1: जैसे मैं माँ हूँ, बच्चों की दादी हूँ,
0: बिल्कुल।
1: तो ये रक्षा सूत्र, सबसे पहला रक्षा सूत्र मैं बांधती हूँ एक फौजी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: हाँ, मेरे घर में ऐसे एक जगह बनी हुई है जिसमें सबसे पहला रक्षा सूत्र और पहला दिया दिवाली का,
0: अरे
1: वाह, फौजी के नाम है।
0: वही तो हमारे फौजी भाई हैं जो सीमाओं पर खड़े हैं, हम हाँ। बेशक उनसे मिलें या ना मिलें, लेकिन वो दिल में जगह, वो प्यार और जो दुआएं हैं वो उनके लिए हमेशा रहनी चाहिए।
1: ऐसा है मोनिका, हमारे घर में फौजियों की फौज थी
0: जी।
1: हमारे मामा लोग आर्मी के ऑफिसर, आगे हमारे नंदोई मेजर जनरल,
0: क्या बात
1: एक
0: है,
1: एयर चीफ थे मेडिकल के हमारे दामाद, तो उनके बच्चे आगे ब्रिगेडियर रिटायर हुए,
0: बहुत
1: तो फौजियों की फौज हमारे खून में बसी हुई है।
0: और बहुत खुशी हो रही है कि जब ऐसे परिवारों से फोन आता है और वो अपने अनुभव साझा करते हैं और अपनी फीलिंग्स को बताते हैं तो बहुत आनंद आता है।
1: अगली बात बताओ
0: जी जी,
1: अपने भाई को छोड़े हुए हमें 16 साल हो गए।
0: अरे अरे अरे, तो
1: और अब मेरा मन ना सिर्फ अपने रक्षा सूत्र में है कि जो मैं, जो मेरे ना प्यार के रिश्ते बहुत हैं,
0: बिल्कुल।
1: मेरी लड़की है आरजे मीनाक्षी, मेरा बेटा वो भी आरजे रहा यहाँ मिर्ची में
0: जी,
1: तो इनके रक्षा सूत्र बहुत पक्के धागे हैं मेरे
0: जी। हम अपने भाई से बेशक, बेदी जी क्षमा कीजिए आपको रोक रही हूँ, कि हम अपने भाई से बेशक दूर हैं लेकिन जो प्यार की डोर है वो दूरियों को बढ़ाती नहीं है, वो उनको कम करती हैं, बिल्कुल।
1: कई बार मोनिका ऐसे हालात हो जाते हैं
0: जी
1: कि आपको ना अपनापन जहाँ मिले वही अपने हैं।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा।
1: हाँ, रिश्ते नहीं है, खून के रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुकी बात
0: जी।
1: जो मेरे को प्यार मिलता है, मेरे ख्याल में दुनिया को किसी को नहीं मिला, पर सब प्यार के रिश्ते
0: जी।
1: देखिए, ये आपका आकाशवाणी परिवार, मैं 76 की हो जाऊंगी
0: जी जी जी,
1: तो आप सोचिए कि इनसे मेरा मोह माया का रिश्ता कितना पुराना और कितना पक्का है।
0: तो आकाशवाणी के लिए भी एक रक्षा सूत्र आपने जरूर रखा होगा।
1: हाँ, रखा।
0: हम भी चाहेंगे कि हमारे लिए एक रक्षा सूत्र आप जरूर बांधे।
1: मैं यही मानती हूँ, देखो कि ये रेडियो जो मैं 10 साल की थी तब से रेडियो के साथ कहते चिपकी हुई हूँ
0: जी।
1: तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब तक जियो मेरे बाद भी ये रक्षा सूत्र आप सबकी रक्षा करता रहे और आप खूब फलो फूलो।
0: बहुत खूब, धन्यवाद धन्यवाद बेदी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके।
1: नहीं नहीं, बस मैं सबको यही कहती हूँ कि प्यार के रिश्ते को ऊपर रखिए,
0: बिल्कुल
1: दिल साफ है, और सबसे पहले अपने फौजियों को रखिए ऊपर, जो जिनके कारण हम जिंदा हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: बिल्कुल, हमें भी जो कहते हैं ना कि गदगद हो गए हम बात करके, तो वो वाली फीलिंग है अभी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू थैंक यू
0: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: हेलो, नमस्कार जी। जी
0: नमस्कार जी, नाम आपका?
2: हाँ, नाम दीदी शिवा तिवारी, सेक्टर 9, पंचकुला, ऑक्सीजन होटल। दीदी, मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ।

0: शायद गांव में हो दीदी, दो महीना ढाई महीना हो गया गांव में आया वो
1: जी जी,
0: और डीपी आना है अगले महीने में वहाँ चंडी पंचकुला।
1: अरे वाह, पंचकुला से दूसरा कॉल आ गया है कार्यक्रम में। तो ये जो धागा रहता है जिस पर हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन का, ये होता कच्चा है लेकिन रिश्ते बड़े पक्के रहते हैं, उस पे क्या कहेंगे आप?
0: आज आज तो दीदी जो आज तो रक्षाबंधन है और फिर आपको हमारे तरफ से शुभ शुभ कामना हो सभी पूरे विभिन्न भारतीयों को। और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार ऐसा बहुत अच्छा होता है, साल में होता है, लेकिन सब लोग उसको ऐसा कि इसको प्यार से बहन लोग को राखी बांधती है और उसके भाई लोग सब निभाते हैं पूरा वचन।
1: जी जी जी,
0: सही बात है दीदी की नहीं?
1: बिल्कुल। तो आपकी कलाई पे राखी सच चुकी है या नहीं?
0: नहीं, बहन ने सुबह राखी तो बांध दिया सुबह 8 बजे ही, क्योंकि वो आई हमारे घर पे तो राखी बांध के गई। मैं सुबह गाँव में हूँ और फिर मैं सुबह यूपी में ये जिला बहराइच से और गोंडा, पुराना घर गोंडा है, नया घर बहराइच में है तो में।
1: तो शिवा तिवारी जी, जैसी नोकझोंक बचपन में होती थी अपनी बहन से, क्या वो अभी भी जारी है या अब थोड़े समझदार बन गए हैं हम, थोड़ी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, कैसा अनुभव है अब?
0: अब दीदी ऐसा कि बाहर का ऐसा कि जब भाई को तो कोई भी चीज है तो उसको भाई को थोड़ा निभाना है, बहन जो ऐसा की बहन ऐसा चीज है कि बहन का कोई भी जो दुख तकलीफ हो तो उसको भाई को तो निभाना, क्योंकि राखी का बंधन ऐसा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को वो दो पति ने जो राखी बांधा था तो वो अपना वो जब उनका चीर हरण हुआ है तो वो अपना श्री के भगवान वही केवल
1: बिल्कुल
0: पर हाँ। वो पूरा साड़ी का तो ढेर लगाया है
1: जी जी जी,
0: जो दोनों पर खेल रहे थे
1: जी। तो
0: इसके लिए वो तो कर दीजिए।
1: तो ये रक्षा का बंधन जो है सिर्फ भाई का ही फर्ज नहीं है, बहन का भी फर्ज है।
0: रुटवा है, खोल दो पल्ला खुला। हाँ हाँ सर दीदी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ये तो ताजा के लिए कितना तुम्हें दो बजे को तुम्हें दिया है, तो ऐसे तो भाई लोग को भी तुम्हें निभाना चाहिए। ये तुम्हें जो राखी है इसका तुम्हें एक को ताजा का कीमत बहुत है।
1: चलिए,
0: जिंदगी के लिए
1: जी जी जी शिवा जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
0: ठीक है दीदी, नमस्ते।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका, जोड़ी पक्की इनाम तगरा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदो।

0: जी नमस्कार, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: मोनिका बहन को यश कुमार वर्मा जी।
0: यश जी, बहुत खुशी हुई, बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। मुबारक हो रक्षाबंधन का त्योहार आपको भी और सभी सुनने वालों को।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अपने आज के विषय पर कुछ कहना चाहेंगे यश जी?
1: बिल्कुल कहना
0: चाहिए। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? जी अनाउंसर्स के लिए आप कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है यश जी हम तक, पर हम जानते हैं जो आपका प्यार है हमारे साथ, पूरे आकाशवाणी परिवार के साथ, वो हमेशा रहेगा, है ना जी? जी जी जी तो जितने भी अनाउंसर हैं सभी आकाशवाणी परिवारों के, उन वो सब आपके लिए बहने हैं और उन्हें आप मुबारकबाद देना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं यश जी? चलिए चलिए, तो आपका मैसेज पहुंच चुका है और राखी की ढेरों शुभकामनाएं और आपकी अच्छे स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
2: सबसे पहले रक्षाबंधन की मुबारक, और मैं हिमाचल से स्मृता डोगरा बोल रही हूँ।
0: आपको भी मुबारक स्मृता जी। और हिमाचल की कौन सी जगह से बात कर रही हैं?
2: मैं हमीरपुर भोटा है हमारा गांव।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगी स्मृता आप?
2: हाँ जी, पहले तो आप बांधा है राखी मैम?
0: अभी हमें मौका नहीं मिला, लेकिन जितने भी भाई हैं और जितनी भी बहनें हैं उनकी जो खुशी है उसको सुनने का मौका मिल रहा है, उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है।
2: ड्यूटी पहले है ना मैम, कर्तव्य पहले है,
0: सेवा पहले है हमारे जो कर्तव्य। जी हाँ,
2: मैं तो रिटायर हो गई ना, तो मैं ये कह रही मैम, ये जो पुरानी यादें हैं बहुत अच्छी हैं। मेरे भाई जो है, उसको एक भाई है दो बहनों के बाद, तो मेरे से 8 साल छोटा है, तो हमारे को बच्चों की तरह ही वो, जैसे उसका पालन पोषण मैं उसको अपनी छाती पे सुला लेती थी और मैं भी सो जाती थी, वो भी, मैं 5th में थी, मेरी मम्मी ने आना किचन से काम करके खाना बना के दोनों सोए हुए। जब मैं उसको राखी बांधती थी ना, तो पैसे की, हमारा फोकस पैसों पे होता था उसमें।
0: हाँ,
2: मतलब ये इतना माइंडसेट वैसा ही था उसमें, छोटे होते थे ना,
0: जी,
2: तो पैसे इकट्ठे करने। तो हमने बोला मम्मी रखड़ी पे तो ये देगा हमें, उसको हमने बोला फिर जब हम टिक्का लगाएंगे ना दिवाली, हाँ, भाई दूज,
0: जी जी,
2: तब हम देंगे इसको,
0: बिल्कुल
2: एक्सचेंज रखा हुआ था। तो अभी बड़ी याद आती है, अभी वो बोलते हैं उधर फरीदाबाद में है, मदर उधर भाई की साथ में है, तो बोलते आ जाओ, मैंने कहा अभी तो मुश्किल है आना, कोई नहीं अगले साल मिलेंगे तो बनाते हैं प्रोग्राम।
0: तो स्मृता, बचपन में लड़ाई झगड़ा भी होता था भाई बहनों में या हमेशा प्यार?
2: बहुत मैम, मेरी जो छोटी बहन थी ना, मेरे मम्मी डैडी कहीं चल जाते थे, वो तो सरेंडर कर देती थी, जो वो बोलता था मान लेती थी, और मैं लड़ती थी
0: जी।
2: अब जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरी लड़ाई झगड़े का काम पति के मिल गए मुझे, उनकी शादी होगी, उसको
0: क्या बात है,
2: मेरी भाभी लॉकडाउन के लिए,
0: तो भाई को थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन वो लड़ाई के पीछे भी एक प्यार छिपा रहता था स्मृता जी।
2: बहुत मैडम, बहुत, अभी भी वो मुझे पता क्या हंसता, वो हंसता था मुझे ना मैम, हमारे बाथरूम में ना शीशा था।

0: बोले बाथरूम से शीशा हटा दो, तभी एक घंटे से पहले बाहर आएगी कि जो सुंदर शीशा लगा हुआ है।
1: तो हटाओ मम्मी, एक दूसरे की कमियां और खूबियां बखूबी जानते हैं भाई बहन, है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी मैम।
1: और जब दूरियां होती हैं, हम कहीं पे हैं, भाई कहीं पे है, और

0: बाद मेरी लड़ाई झगड़े का काम पति के मिल गए मुझे, उसकी शादी होगी, उसको
1: क्या बात है,
0: मेरी भाभी लॉकडाउन के लिए।
1: तो भाई को थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन वो लड़ाई के पीछे भी एक प्यार छिपा रहता था स्मृता जी।
0: बहुत मैडम, है ना? बहुत, अभी भी वो मुझे पता क्या हंसता, वो हंसता था मुझे ना, मैम हमारे बाथरूम में ना शीशा था, बोले बाथरूम से शीशा हटा दो, तभी एक घंटे से पहले बाहर आएगी कि जो उधर शीशा लगा हुआ है।
1: तो एक दूसरे की कमियां और खूबियां बखूबी जानते हैं भाई बहन, है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी मैम।
1: और जब दूरियां होती हैं, हम कहीं पे हैं, भाई कहीं पे है, और कई तो सीमाओं की रक्षा कर रहा है हमारा,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: तो ऐसे में वो जो प्यार है फिर वो बहुत याद आता है कि ये जो दूरियां बन गई है क्यों है, मन करता है कि अभी उनके पास जाएं और गले लगा लें या लड़ाई ही बिल्कुल कर लें।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो
0: हमारे साथ, हाँ जी मैम, हमारे साथ ऐसा था कि मेरे हस्बैंड आर्मी में ना
1: जी,
0: तो मेरा फर्स्ट बेबी होना था, तो मेरा भाई धर्मशाला मुझे बाइक पे लेके गया था। वो मुझे लेके गया था कि मैंने पता नहीं क्यों गई, मुझे नहीं पता कि, पर बाइक पे चली गई, मुझे भी कोई डर नहीं। और फिर टायर पंचर हो गया बैक वाला, जहाँ मैं बैठी थी पीछे, नीचे खाई पहाड़ी धर्मशाला हिमाचल, उसे कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे बाइक साइड की, बोलता दीदी जरा उतरना।
1: अच्छा।
0: आज मैं सोच के डर जाती हूँ कि मैं भी कैसे बैठी, कितना विश्वास होता है एक दूसरे पे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए ये विश्वास बनाए रखिए स्मृता जी।
0: बिल्कुल मैम, वैसा प्यार आपका भी अपने भाई से बना रहे,
1: थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
0: वेलकम मैम, थैंक यू।
1: तो दोस्तों, ये धागा हमें उस बंधन की याद दिलाता है जो मानव के हृदय को दूसरे मनुष्य के हृदय से जोड़ता है। राखी कुछ दिनों में कलाई से बेशक उतर सकती है आपके, आपका धागा भी कमजोर हो सकता है और समय बीतने के साथ वो टूट भी सकता है, लेकिन जिस बंधन की बात हम कर रहे हैं वो धागे का बंधन नहीं है, वो दिलों का बंधन है। और ये बंधन सच्चा हो तो इसे समय की शक्ति भी नहीं तोड़ सकती है। तो ऐसा ही मजबूत रखिए अपना ये बंधन, और जो रंग बिरंगी राखी लेकर आई है आपकी बहन, उसे अपनी कलाई पर जरूर सजाइए।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR, प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे.
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़. कॉल 9876277700.
3: हेलो चंडीगढ़, कार्यक्रम में स्वागत है आपका.
4: हेलो, सत श्री अकाल
3: जी. जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
4: आप बढ़िया बेटे
3: जी. आपका नाम?
4: जी.
3: अच्छा सर नेम आप चाहते हैं?
4: जी
3: जी जी जी. तो चलिए आज के मौके पर विजय जी भाई बहनों की मुलाकात होगी, हमें तो इसी बात की बड़ी खुशी है.
4: हाँ बच्चे, हाँ
3: है ना.
4: पता पता पता कि बच्चे मेरे दो बहन हैं, दो बहन गुजर गई
3: हैं.
4: मैं सब सेलिब्रिटी बन रहे हैं. मेरा दुनिया मेरी बहन है, बराबर है मेरे बराबर की बहन है, मेरी बहन है.
3: जी जी.
4: जिड़े अपने जिड़िया चाहे छोटा है बड़ा है, जिड़े उन्हें बराबर नहीं है, वो सब बहन होंगी.
3: बिल्कुल जी. रिश्ते कह के नहीं बनते हैं, निभाने पड़ते हैं, है ना विजय जी. जी बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. अरे धन्यवाद, इतना प्यार आप आकाशवाणी परिवार को देते हैं विजय जी. पर आपने जगह नहीं बताई, कौन सी जगह से कॉल किया है? खन्ने से. ओके जी. जी चलिए, तो बहुत अच्छा लगा कि बड़े समय बाद आपसे बातचीत हुई है और इस मौके पर आपने शुभकामनाएं दी हैं और अपना प्यार जाहिर किया है सबके लिए. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए.
4: बच्चे सब सुखी रहो, थोड़े पैसे के पास बात हो जाए.
3: धन्यवाद धन्यवाद आपका. जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका.
5: गुड मॉर्निंग मोनिका जी.
3: वेरी गुड मॉर्निंग जी.
5: मैं बात कर रही हूं.
3: आपका नाम हम नहीं सुन पाए.
5: किरण बात कर रही
3: है. अच्छा किरण जी, कौन सी जगह से कॉल किया है?
5: मैम मैंने कुफरी
3: से आप बात कर रही हैं. और किरण आपसे एक गुजारिश रहेगी हमारी कि जहाँ प्रॉपर सिग्नल हो वहाँ पे आप एक जगह खड़े हो जाएं ताकि हमारे साथ साथ तमाम लिसनर्स भी आपकी आवाज प्रॉपर सुन पाए.
5: जी अब आ रही है मैम?
3: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी. आज के विषय पर क्या कहेंगी? कच्चे धागे हैं और पक्के रिश्ते हैं ये राखी के.
5: मैम सबसे पहला तो विधवासी को हैप्पी रक्षाबंधन.
3: आपको भी ढेरों शुभकामनाएं इस पर्व की.
5: तो मैम ये यही कहना चाहूंगी, रक्षाबंधन पवित्र बंधन होता है.
3: जी
5: हेलो.
3: हाँ हाँ सुन रहे हैं किरण आपको.
5: हेलो
3: जी जी हम आपको सुन रहे हैं.
5: हेलो
3: जी किरण, हम आपको सुन पा रहे हैं.
5: रक्षा बंधन पवित्र बंधन होता है. मैं अपनी बात कहना चाहूंगी मैम बचपन की. बचपन में मैम हम अपने भाई से बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे.
3: जी
5: तो मैम उसमें प्यार भी बड़ा
3: प्यार तो रहता ही है. हम बेशक लड़ाई झगड़ा करें लेकिन कोई दूसरा अगर टेढ़ी आंख करके भी देख लेना भाई बहन को तो अंदर से दिल बड़ा जलता है.
5: मैंने एक बार अपने भाई को परखने के लिए कुछ मतलब बचपन में नाटक कर लिया.
3: क्या नाटक किया?

0: मेरा भाई मुझे प्यार करता है, तो मैम बचपन की बुद्धियां तो ऐसे ही होती है, नादान होती है। तो मतलब हमारे गांव के लड़के का मतलब ऐसा कह दिया कि हमको छेड़ता है या गाली गलौज करता है। तो मतलब इतना कहना था मेरा, तो मतलब मेरे भाई ने जाके उसको दो चार लगा दिए।
1: और जब सच्चाई पता चली तो
0: तब मुझे डांट पड़ गई।
1: चलिए किरण, आपका ये अनुभव हमने सुना और अब समय हो गया है हम जाने कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक क्या कह रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: मोनिका ठाकुर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सेक्टर 51 से। जी
0: सुरेंद्र कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को, आकाशवाणी को,
0: आप सबको भी
1: अवसर पर।
0: जी आपको भी रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये रक्षाबंधन त्योहार बहुत ही एक पवित्र त्योहार है
0: जी,
1: और बहन भाइयों का इतना प्यार ये इसमें है कि हमें जीवन भर नहीं भूलता।
0: बिल्कुल,
1: और बचपन की बातें भी याद आती हैं।
0: तो आज मुलाकात हुई अपनी बहन से, राखी सच चुकी है आपकी कलाई पे?
1: हाँ जी, तो इसमें यह है जी कि बहन भाई छोटे होते हैं तब तो वो लड़ते भी हैं कि मेरे को बहन ने राखी नहीं बांधी, वो हमें आज भी याद आता है। आज हम बहुत उम्र के हो गए हैं लेकिन हमारी बहन दूर से भेजती है, बाहर से भेजती है, तो वो पूछती है कि राखी मिली है कि नहीं मिली, तो राखी हमें मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है। ये अटूट बंधन है जी।
0: जी एक मन में टीस एक कसक भी जरूर रहती है कि जब हम छोटे थे तो हम साथ में रहते थे, अब शादी की वजह से या कोई भी रीजन हो हम अपनी बहन से जब दूर हैं, जब वो कलाई पे राखी बांधती थी तो वो आनंद ही कुछ और था, है ना?
1: जी जी जी, ये बिल्कुल धागा ही नहीं है जी, ये तो एक बहुत पवित्र त्योहार है और इसमें कोई गुस्सा राजी नहीं। कभी कभी गुस्सा हो भी जाता है तो उस गुस्से को दिल में नहीं रखना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और बहुत प्यार बना रहे।
0: बिल्कुल, तभी तो धागा तो कहते हैं कच्ची डोर है वो टूट जाएगी, लेकिन प्यार का जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, है ना? अच्छा, तो जेब कितनी खाली हुई आपकी?
1: हाँ जी, मेरी दीदी जो है जी वो 80 साल की है।
0: हाँ।
1: और मैं 1-2 साल छोटा हूँ उससे।
0: तो वो प्यार वो अभी भी उतना ही है? वो
1: तो
0: तकरार छेड़छाड़ होती
1: नहीं है, वो साथ में एक पत्र भी भेजती है, साथ में थोड़ी सी चीनी डाल देती है, पूछती है कि मिली है कि नहीं मिला है, तो हम कहते हैं नहीं हम धागा भी बांध लेंगे, कोई बात नहीं, ये आपका प्यार है। तो हम बहुत ही उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि ऐसी बहनें भी हैं जो इतना प्यार रखती है। और मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ जो अपने भाइयों को प्यार करती हैं।
0: जी तो सभी भाई बहनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे इस मौके पर, तो हम यही कहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मोनिका जी।
0: जी नमस्कार, आपका नाम?
2: मैं सुशील शर्मा ठियोग हिमाचल से बोल रहा था।
0: जी सुशील जी, आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: आज के अवसर पर तो यही कहूँगा मैम, ये तो एक अटूट बंधन है और रक्षाबंधन का तो इंतजार रहता ही है हमेशा की तरह।
0: जी जी।
2: और ये एक डोर है जो मतलब अटूट डोर है, एक भाई बहन का असीम जो प्रेम है जो और इसमें ऐसा है कि आज की दौर में भले ही क्या बोलते हैं AI का जमाना आ गया है, इंटरनेट का जमाना आ गया है
0: जी,
2: तो इससे मतलब दूरियां जो थी क्या बोलते हैं काफी कम हो गई है। जब आप आपकी बहन अगर दूर भी है तो बात कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं,
0: आप वीडियो कॉल पे देख सकते हैं कि अच्छा राखी बांधी है, एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं।
2: जी जी जी बिल्कुल
0: जी
2: बिल्कुल, और इंतजार भी रहता है काफी रहता है इंतजार।
0: तो जो राखी अब की बार आई है वो ऑनलाइन आई है, बाय पोस्ट आई है या खुद आपकी बहन आप तक पहुंची है?
2: नहीं मैं, मेरी तो नजदीक है बहन, यहाँ मतलब घर से नजदीक है मेरी बहन तो ना।
0: जी
2: जी जी, तो वो तो खुद आ जाते बंद ने ना। हाँ जी हाँ जी।
0: तो भाई तो अक्सर कोशिश करते हैं कि बहनों की रक्षा करें हम, और

0: कभी मौका मिला बहन को कि भाई की रक्षा की हो?
1: बिल्कुल, मैं तो छोटा हूँ, क्या बोलते, सबसे परिवार में सबसे छोटा हूँ, मेरी बहन सबसे बड़े है, तो
0: जी
1: क्या बोलते, वो तो है ही है, हम मेरे से बहुत बड़े हैं, तो सारा रहता है हर चीज में, हर इसमें क्या बोलते, मार्गदर्शन, हर चीज, ऊंच नीच, क्योंकि और
0: चलिए,
1: इसका क्या बोलते, काफी वो रहता है बहन का,
0: तो चलो
1: और अपनी,
0: ये
1: और मैं भी अपनी तरफ से प्यार करता हूँ जितना, मतलब
0: बहुत
1: अपनी तरफ
0: खूब
1: से कर सके बहन के लिए,
0: जी।
1: उतना कम है।
0: सुशील जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपका प्यार
1: बहुत
0: यूं ही बना रहे, है ना?
1: बहुत बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई है।
0: धन्यवाद, आप सबको भी बधाई। श्रोताओं, राखी इसलिए भी महान है कि बहुत छोटे माध्यम से ये बहुत बड़ी बात कहती है। एक पतला सा धागा हमें याद दिलाता है कि जो मानव है उसकी वास्तविक शक्ति उसके अकेलेपन में नहीं बल्कि उसके आपसी संबंधों में है। और हम इस धागे को बांधें तो ये सिर्फ रस्म के लिए नहीं है बल्कि एक संकल्प के साथ हम बांधें कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करेंगे, अपने बीच ऐसी एकता बनाए रखेंगे जिससे कोई बाहरी शक्ति हमारी उस एकता को कमजोर ना कर सके। और अगर ये सारी चीजें हमारे राखी के बंधन के साथ जुड़ जाएं तो ये प्यार और ज्यादा पक्का हो जाएगा।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार मोनिका
0: जी। नमस्कार जी, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आपको।
1: मैडम आपको बहुत बहुत बधाई और भारतवर्ष के सभी बहनों को मेरी बहुत बहुत बधाई, भाइयों को भी, उनके लिए भी।
0: तो बधाई है, बधाई देने वाले भाई का नाम तो जान ले हम।
1: हाँ जी हाँ जी, मेरा नाम रविकांत गर्ग है, मैं 126 मोहाली से बोल रहा हूँ, सेक्टर 126।
0: सेक्टर 126 जी। रविकांत जी, आज के जो विषय है, आज का जो पर्व है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कच्चे धागे और पक्के रिश्ते कैसे?
1: बिल्कुल मैडम, ये बेशक कच्चे धागों का रिश्ता है, लेकिन बहुत मजबूत रिश्ता है ये। ये बहन भाई का प्यार है, ये बहुत ही पवित्र प्यार है
0: जी।
1: और ये मतलब हम तो इसको बंधन में बांधते हैं ना, कि ये धागों से बंधन में बंध गए, लेकिन ये बंधन में बंधने वाला नहीं है
0: जी।
1: ये बहुत ही स्वतंत्र प्यार है,
0: बिल्कुल
1: इसको किसी उसमें नहीं आंका जा सकता है।
0: प्यार की कहते हैं कि कीमत कभी लगाई नहीं जा सकती, वो भले ही कोई भी प्यार है, और ना उसको शब्दों में बयां किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
1: बिल्कुल मैडम बिल्कुल
0: जी। तो
1: देखिए आप तो, हाँ जी
0: हाँ हाँ कहिए आप।
1: मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं क्या, चलो बचपन में तो हमारा ये था कि ठीक है, हमें बहुत इसका चाव था कि राखी आएगी और हम सबसे पहले बहुत जाते थे कि ठीक है पहले मेरे को बांधो। हम इतने छोटे भाई बहनों का इतना रहता था कि पहले मैं बधवाऊंगा। पर चलो वो तो बचपन की बात थी, लेकिन अभी भी है तो पूरा अभी भी क्रेज है राखी का
0: जी।
1: चलो यहाँ भी है बहने, अब चलो सब बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी जगह बसे हुए हैं, बट फिर भी आज भी चलो सुबह मेरी बहन आई है, राखी बंधवाई है हमने
0: जी,
1: तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्यार है ये हमेशा कायम रहे, ठीक है ना जी। इसको मतलब कहीं हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आना चाहिए कि जो भी मन मुटाव होते हैं वो तो एक जगह अपने अलग होते हैं, लेकिन ये जो बंधन है सारे अपने प्यार को भुलाकर, अपने सारे उसको भुलाकर, अपने ये क्या कहते हैं मन मुटाव को भुलाकर,
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक खास बात ये भी रहती है भाई, जब राखी के त्योहार के बाद अगले दिन स्कूल जाएगा तो वो अपनी राखी जरूर दिखाते थे साथियों को कि देखो मेरी कलाई पे कितनी सुंदर राखी है, और सबसे ज्यादा राखियां किसकी कलाई पर हैं, तो ये भी एक कॉम्पिटिशन हो जाता था, है ना।
1: हाँ वो तो बचपन में तो बहुत ज्यादा, मेरी तो मानो कहते हैं ना कलाई पूरी भर जाती थी
0: जी,
1: इतनी बहन मेरी राखी बांधती थी। तो होता भी था हमें कि ठीक है जी सबसे ज्यादा मेरे को राखी बांधी जाए। तो चलो ये तो है कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है।
0: हाँ
1: बहुत अच्छी अच्छी बात कही है, ये अच्छा है
0: जी।
1: और ये गीत भी सुनवा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके आभारी रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे।
1: तो अलग अलग जगह, बल्कि हमारी तो विदेश में भी बहनें बसी हैं, तो उनका भी प्यार हमें ऐसे ही मिलता है। तो हमारे ग्रुप में अपना चलता रहता सारा ये चीज
0: जी।
1: मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे ही भाई बहन का प्यार बना रहे
0: जी जी,
1: ठीक है ना।
0: रविकांत जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए,
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत
0: जी। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में स्वागत है आपका।
2: नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: जी नरेंद्र शर्मा जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: आज के विषय पे एक तो सबसे पहले सबको बधाई, भाई बहनों को
0: धन्यवाद, आपको भी देना है।
2: और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, राखी से ही हमारे अब सब त्योहार शुरू होते हैं
0: जी।
2: और इसमें मैं थोड़े से अलग बात बताना चाहता हूँ, बहनों की इम्पोर्टेंस कितनी है
0: जी।
2: मेरी मदर थे तो वो तीन भाइयों के बाद हुए थे, तो मुझे वो बताते थे भी हमारे जो माता पिता थे, हमारे नाना नानी, वो मंदिरों में जाके मांगते थे उनके लिए भी हमें लड़की चाहिए।
0: हाँ हाँ।
2: और जब वो हुई तो उनका नाम उन्होंने मंगो रखा।
0: अरे वाह,
2: हमने मांग के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो भावनाएं उसी नाम में छलक आई।
2: कितने वो शी वाज वेरी डियर टू ऑल हर फैमिली मेंबर। और उसके बाद जब हमारी बारी आई, हम भी तीन ब्रदर थे पहले
0: जी,
2: तो हमारे हम अभी छोटे थे पर हम देखते थे माता पिता जाते हैं मंदिरों में। तो बाद में हमारे भी एक बहन हुई, दो बहने हुई
0: जी।
2: तो ये भी एक किस्म की, देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है हर फैमिली में, बहन के बिना या लड़की के बिना काम नहीं चल सकता,
0: परिवार अधूरा लगता है। वो एक केयर जो लड़की अपने भाई की करती है, जो बहन अपने भाई की करती है, वो अधूरा सा लगता है। अगर भाई भाई ही होंगे या बहने बहने ही होंगे

0: दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जितना
1: वो
0: खुल के
1: बहनें तो हमारी काफी छोटी हैं, बट दे आर वेरी डियर टू अस।
0: जी
1: अभी तक भी एक तो बाहर है, एक यहाँ पर है, अभी राखी बांध के उन्होंने उनको हमने एप्स पे भेज दिया भी, आपकी राखी मंजूर होगी।
0: जी जी जी जी
1: तो
0: तो ये
1: ये
0: प्यार
1: इम्पोर्टेंस चलती रहनी चाहिए और इस फंक्शन का इसको और भी ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए।
0: चलिए, तो ये रिश्ता यूं ही खूबसूरत बना रहे आपकी जिंदगी में। शुक्रिया
1: हाँ
0: हमसे
1: जी,
0: बात करने के लिए।
1: शुक्रिया शुक्रिया।

0: दोस्तों, राखी की थाली में रिश्ते की एक पूरी कहानी सजी होती है। रोली से माथे पर तिलक, अक्षत से मंगल कामना और दीपक से शुभता और राखी से रिश्ते का संकल्प। भाई बहन का ये रिश्ता ताउम्र बरकरार रहे, हम यही चाहेंगे। और रक्षाबंधन के इस पर्व की एक बार फिर से आकाशवाणी के पूरे परिवार की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
4: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
0: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
4: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
5: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे

0: प्यारे श्रोताओ नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब परिवार के साथ सकुशल और आनंदित होंगे। इससे पहले हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप हमें अपने सुझाव विचार आपके परामर्श हमें भेज सकते हैं और हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ 8527449955।
0: एक बहन अपने भाई के लिए होती है कीमती उपहार, कभी कभी बच्चों की सी शरारत, कभी कभी माँ का जैसा प्यार। हमारी कामयाबी पर होती है हमसे ज्यादा खुश, पर नाकामयाबी के वक्त समेट लेती है हमारे सारे दुख। उम्र भर की दोस्ती का बहनों से मिलता है वरदान, उम्र भर की दोस्ती का बहनों से मिलता है वरदान, बरसाती है अपने भाई पर प्यार, करती है गुमान। हर दिन करते हैं शुक्रिया अपनी बहनों को हम, हर दिन करते हैं शुक्रिया अपनी बहनों को हम, पास न होकर भी जिनका प्यार कभी नहीं होता कम। खुशकिस्मत हैं वो जिनकी बहनें करती हैं उन्हें हर पल याद, खुशकिस्मत हैं वो जिनकी बहनें करती हैं उन्हें हर पल याद। जिंदगी रहे खुशनुमा, बस यही है हम भाइयों की फरियाद। जी हाँ दोस्तों, एक ही माता पिता से पैदा होने वाले भाई बहन का रिश्ता एकदम अनोखा होता है, बहुत ही खास होता है, अटूट होता है। बचपन में साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी घटनाओं के गवाह होते हैं भाई बहन। देखते ही देखते बहन की शादी का वक्त आ जाता है और बहन शादी करके नए घर चली जाती है। उसका नया घर बस जाता है, पर फिर भी उसका लगाव अपने मायके के लिए कभी भी कम नहीं होता। जी हाँ, उसकी खुशी ही उसके चेहरे पर दिखी जाती है और वापस मायके आना उसके लिए बड़ा आनंद का विषय होता है। मायके आकर वो सबके साथ आनंद करती है, पर भाई और बहन का मिलना, एक और बार फिर से साथ में होना एक अनोखा पल बन जाता है। भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। जी हाँ, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। सही मायने में देखें तो भाई बहन से अच्छे दोस्त कोई और होते ही नहीं है। बचपन में एक बहन के लिए उसका भाई सबसे प्रिय होता है, उसके साथ ही बहन लड़ती भी है और झगड़ती भी है, खेलती भी है, गुस्सा भी होती है। जी हाँ, आज हम इसी रिश्ते के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा होता है और नोकझोंक वाला भी होता है, और थोड़ी बहुत नोकझोंक तो सारे रिश्तों में होती है, सारे भाई बहनों में होती है। क्योंकि भाई बहनों के लिए ये कहावत काफी प्रसिद्ध है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल भी बैठा लेते हैं। जी हाँ, यही तो भाई बहन है। भाई बहनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को नकारा नहीं जा सकता, ये सब कुछ ये प्यार में करते हैं। पर दोस्तों, आज मैं इसी रिश्ते की गहराई के विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ। आज अगर किसी से भी ये पूछा जाए कि उनके जीवन का सबसे प्यारा समय कौन सा था, कौन सा समय उन्हें हमेशा याद रहेगा, या कौन सा समय ऐसा था जो हमेशा उनके हृदय में रहेगा, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि उनका बचपन। और अगर सबसे प्यारे रिश्ते के बारे में बात किया जाए तो सब लोगों का जवाब होता है भाई बहन का रिश्ता। जी हाँ, बचपन और बचपन में भाई बहन का रिश्ता हर किसी के लिए बहुत ही खास होता है। जहाँ एक तरफ भाई बहन का

सुपर हीरो होता है और बहन भाई की जान होती है। पर दोस्तों थोड़ा सा दुख होता है कि आज इस बदलते हुए वक्त में वो प्यार, वो भाई बहन का एक दूसरे से लगाव कहीं खोता जा रहा है। जी हाँ, आज इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, रिश्तों से दूर होता जा रहा है। हम अपने अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने अपने रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। दोस्तों अब इसी भाई बहन के रिश्ते को देख लीजिए। आज के समय में हमने भाई बहन के रिश्ते की परिभाषा ही बदल डाली है। जी हाँ, आज एक बार सोच के देखिए कि हमारा रिश्ता आज हमारी बहन से या हमारे भाई से कैसा है। क्या वो प्यार जो बचपन में था आज वो है, या वो हो गया है, या वो खोया हुआ प्यार फिर से वापस आ सकता है? जी हाँ, जो भाई बचपन में हमारे लिए पिता के समान था, जो बहन बचपन में हमारे लिए माँ के समान थी, आज भी वो हमारे लिए ऐसे ही हैं या नहीं, सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों सोचिएगा जरूर। कहते हैं कि कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। कहते हैं कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। किसी के चेहरे में मुस्कुराती हुई माँ दिख जाएगी तो किसी के लहजे में पिता नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पर अफसोस है कि बड़े होकर भाई बहन बहुत दूर हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, और इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे से मिलने तक को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक 7 साल का बच्चा था जिसका नाम सीनू था। उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम मीनू था, वो 4 साल की थी। दोनों भाई बहन घर से थोड़ा सा दूर कंचों के साथ खेल रहे थे। सीनू ने मीनू को थोड़ी देर के बाद कहा कि घर चलते हैं। बड़ा भाई होने की वजह से उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल दिए। और हुआ क्या कि मीनू जो कि सिर्फ 4 साल की थी, एक दुकान के पास आकर रुक गई और उसकी नजर एक गुड़िया पे पड़ी। मीनू ने बड़े प्यार से उस गुड़िया की तरफ देखा और वो लगातार उस गुड़िया की तरफ देख रही थी। तभी मीनू का भाई सीनू, उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी और सीनू सीधे दुकानदार के पास चला गया और काउंटर पर जाकर दुकानदार से बोला कि ये गुड़िया कितने की है। दुकानदार ने कहा, पैसे हैं बेटा? और जैसे ही दुकानदार ने इतना कहा, सीनू ने अपनी जेब से सारे कंचे निकाल दिए और पैसों की नाई उस काउंटर पे उन कंचों को एक एक करके रखने लगा और देने लगा और बोला, अंकल ये लीजिए। और ऐसा कहकर सारे कंचे उस दुकानदार को दे दिए। तब दुकानदार उन कंचों को और उन दोनों भाई बहन को बड़े गौर से देख रहा था। तब दुकानदार सीनू का अपनी बहन के लिए प्रेम देखकर बोला, नहीं बेटा। तब दुकानदार उन कंचों को फिर से गौर से देखने लगा। तब सीनू ने दुकानदार से पूछा, अंकल पैसे कम है क्या? उन दोनों के प्यार को देखकर दुकानदार ने जवाब दिया, नहीं बेटा, उल्टा ये पैसे ज्यादा हैं। और ये बोलकर 3-4 कंचे रख लिए और बाकी सारे सीनू को लौटा दिए और वो गुड़िया उनको दे दी। और सीनू ने वो गुड़िया अपनी बहन को दे दी। तभी उसकी बहन खुशी से खिल उठी और सीनू अपनी बहन को लेकर घर की ओर चल पड़ा। तभी दुकानदार के यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने दुकानदार से पूछा, मालिक आपने ऐसा क्यों किया? आपने इतनी महंगी गुड़िया ऐसे ही क्यों दे दी? तब दुकानदार ने ये जवाब दिया, ये गुड़िया मैंने एक भाई और बहन के प्यार को दी है। अभी उस बच्चे को नहीं पता कि पैसा क्या होता है और ये कंचे उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। उससे कीमती उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन कंचों से भी ज्यादा कीमती उस बच्चे के लिए उसकी बहन का प्यार था। इस प्यार की वजह से उसने अपनी कीमती चीज कंचे मुझे दे दिए। तब दुकानदार बोला, रुपये पैसे सब कुछ नहीं होते, इन सब के ऊपर एक और चीज है, वो है प्यार और रिश्ते। और तुमने देखा ना कि उस गुड़िया को जब उसने अपनी बहन को दिया, उसकी बहन के चेहरे की खुशी और उस भाई के आंखों की चमक देखने लगा।

कहते हैं ना, खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके सर पर भाई का हाथ होता है। खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके सर पर भाई का हाथ होता है। जिंदगी की हर परेशानी में भाई का साथ होता है। लड़ना झगड़ना और फिर मना लेना, तभी तो रिश्ते में प्यार होता है।

0: जी हाँ दोस्तों, शायद आपको भी आज अपने भाई की, अपनी बहन की याद आ रही होगी। शायद आप जब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको भी अपने भाई का या अपनी बहन का चेहरा आपकी आंखों पे आ रहा होगा। तो देर किस बात की, आज फिर से वापस ले आइए वो प्यार, वो दोस्ती अपने रिश्ते में। पर दोस्तों, आज एक और जरूरी बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ हम अपनी बहन को ही अपनी बहन समझें तो भी गलत है। जी हाँ, अगर हम सिर्फ अपनी बहन को ही बहन समझें तो गलत है। आज के समय में जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बहन सुरक्षित रहे, खुश रहे, तो हमें सारी बहनों के लिए ऐसा ही सोचना चाहिए। और वो कैसे होगा? अपने देश की हर बेटी को सम्मान देकर, प्यार देकर, इज्जत देकर। जी हाँ, जैसे हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं, उसे प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही देश की हर बेटी को अपनी बहन की तरह हमें प्यार करना, इज्जत देनी है। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा है कि जिस दिन हमारे सामने दूसरे की बहन खुद को महफूज महसूस करेगी, जी हाँ गौर से सुनिएगा, कि जिस दिन हमारे सामने दूसरे की बहन खुद को महफूज महसूस करेगी, उस दिन सोच लेना कि हमारी खुद की बहन भी सुरक्षित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सबके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई बहन का रिश्ता बहुत निराला होता है, बाकी सारे रिश्तों से बहुत प्यारा होता है। भाई खुद को मुसीबत में फंसाता है, बहन उसको हर मुसीबत से बचाती है। भाई बहन को खूब रुलाता है और बहन भाई को हर बार याद दिलाती है। भाई अगर झूठ बोलता है तो बहन उसका साथ देती है और बदले में कुछ ना कुछ उससे ले लेती है। बहन के चेहरे की उदासी देख भाई उसे हंसाता है, उसकी हर परेशानी का भाई हल ढूंढ ले ही आता है। बहन की आंखों में आंसू देखकर भाई भी चुप हो जाता है। ये भाई बहन का ही प्यार है दोस्तों, जो उनको एक दूसरे के पास खींच ही लाता है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन में मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे भाई बहन एक दूसरे के साथ फिर से उस बचपन को बांटेंगे। जी हाँ, वो प्यार, वो दोस्ती फिर से बांटेंगे। तो सारे भाइयों को उनकी बहनों का प्यार मुबारक हो और सारी बहनों को उनके भाई का प्यार मुबारक हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो आप अपने सुझाव, अपने विचार, अपने सवाल या आपके परामर्श लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
0: तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने रिश्तों को प्यार दीजिए। याद रखिए, हमारे अपने, हमारे रिश्ते सब चीजों से बढ़कर हैं। तो अब अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान?

0: पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: लीजिए पेश है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और अभी से लेकर ठीक 12 बजे तक आपकी फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे जिसका नाम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। और अपनी फरमाइश भेजने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट AIR चंडीगढ़ पर आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। और आज है रक्षाबंधन का पर्व, तो इस पर हम सुबह से ही आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बधाइयां दे ही रहे हैं। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम, जो आपकी फरमाइश हम तक पहुंची है। पहला गीत सुनना चाहा है त्रिशूल फिल्म से, आवाजें हैं इसमें लता मंगेशकर यशुदास की, संगीत दिया है खय्याम ने, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। सुनने वाले हैं नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा और अलका मिठा।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे ब्रह्मचारी फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है शैलेंद्र ने। इस गीत को सुनना चाहा है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढिंगरा ने और पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा ने।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका. जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा. 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी एक लकी ड्रॉ कूपन. आज ही खरीदो.
2: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. आपकी फरमाइश पर आधारित ये कार्यक्रम रहता है. और अब आप सुनेंगे नाम फिल्म से गीत पंकज उधास की आवाज में. संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने. इस गीत को सुनना चाहा है पवन कन्नौजिया, वंदना कन्नौजिया, गर्मा कन्नौजिया ने श्री आनंदपुर साहब से.

आप सुन रहे हैं म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम और आपकी फरमाइश का सिलसिला जारी है। अब आप सुनेंगे चंबल की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है खयाम ने और गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने। इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने। इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश लिख भेजी है गांव फरांसी जिला हिसार से राज कुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी इन सभी ने। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मजबूर फिल्म से गीत। किशोर कुमार की आवाज में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और इसके अलावा रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी, दीपांशु गुलाटी, चित्रांशु गुलाटी, ये सुनना चाहते हैं सेक्टर 9 पंचकुला से यही गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनपढ़ से। संगीत दिया है मदन मोहन ने। इस गीत को सुनना चाहा है जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जसवाल, गणेश लाल जसवाल, शुभम प्रसाद जसवाल, अर्णव जसवाल, दुर्गेश्वरी जसवाल, राखी जसवाल और तृप्ति जसवाल ने।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अब आप सुनेंगे रेशम की डोरी फिल्म से गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

इस गीत को सुनना चाहा है अम्भई तहसील सिल्लोड़ से, छत्रपति संभाजी नगर से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, विशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के ने।

इसी फिल्म का गीत सुनना चाहा था। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह ने। अब आप सुनेंगे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। इस गीत को सुनना चाहा है मस्कीन परिवार ने। दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से मस्कीन, रितिका आरोही और वाणी ने।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में अगली रिक्वेस्ट हम तक पहुंची है सूरज चौहान, तहसील ठियोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से। ये सुनना चाहते हैं रंगोली फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काजल फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में संगीत दिया है रवि ने। इस गीत को सुनना चाहा है ईशु निशु दुधला मंडी अम्बाला कैंट से। इसके अलावा ललिता पाल हुकुमचंद हैं। इसी गीत को सुनना चाहे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने।

0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख

अभी आप सुन रहे थे शिरडी के साईं बाबा फिल्म का गीत, जिसमें स्वर थे मोहम्मद रफ़ी, जानी बाबू, अनूप जरोटा, अनुराधा पौडवाल और साथियों के, शब्द रचना मनोज कुमार की और स्वर रचना पांडुरंग दीक्षित की।

रिश्ता कागज़ का। इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत राजेश रोशन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत सबसे बड़ा रुपया फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में पिरोया था बासु मनोहारी ने। अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में रंगीला रतन फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: अरे भाई मोहन, ये कौन है भाई?
2: नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है।
1: तुम जानते हो
2: कौन है?
1: ये कौन है?
2: कौन है?
1: कौन ये?
3: मैं हूँ रंगीला रतन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ

0: रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने और अमित खन्ना के बोलों को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने।

अगला फिल्म अगला गीत हमने लिया है बड़े दिल वाला फिल्म से। आर डी बर्मन के संगीत में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है विजेता पंडित और किशोर कुमार के स्वर में जॉनी और जीनी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है चितचोर फिल्म से, यशुदास के स्वर में ये है गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

अब आपको हम सुनवा रहे हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जंजीर फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गुलशन बावरा के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 1:05 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम रहेगा सुरीला सफ़र।

फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है 11वां सेकंड। लेखिका है आरती श्रीवास्तव। पांच बजकर 20 मिनट पर पेश किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। 5 बजकर 30 मिनट समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। कार्यक्रम अमृतवाणी प्रसारित किया जाएगा 6 बजकर 30 मिनट पर। शाम 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7 बजकर 47 मिनट पर। फिर सुर सांझ कार्यक्रम में रात 10 बजकर 32 मिनट पर।

रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए झलकी, कभी ऐसा भी होता है। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 पर। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर केंद्रित रहेगा। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और 1:10 पर पंजाबी में हमारे जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में मुलाकात की। इस मुलाकात के उपरांत हरियाणा भवन नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान हरियाणा की नई औद्योगिक नीति, प्रदेश में ताजा निवेश व विभिन्न विषयों पर भी विस्तार से बातचीत हुई है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई विषयों पर चर्चा की है। प्रमुखता से हमने पिछले दिनों जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो लॉन्च की थी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है, और उसके साथ साथ हमने जो नौ सेक्टोरल पॉलिसीज जारी की हैं उनके बारे में चर्चा की है। पिछले दिनों मेरा जो जापान का विजिट था, हम निवेश लेकर आए, उस निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जिस दिन नीति जारी की गई उसी दिन 1,10,000 करोड़ का निवेश आया, जिसमें से लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इसके अलावा हाल ही में जापान यात्रा के दौरान 4,500 करोड़ रुपए के समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुए थे, जिनमें से 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इसी महीने मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में लगभग 66,000 करोड़ रुपए के समझौता पत्र दस्तखत किए गए हैं। इन सबकी जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई

दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर करनाल जेल में बंदियों से मिलने पहुंची उनकी बहनों और बेटियों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। जेल अधीक्षक लखबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यालय के निर्देश अनुसार जेल में बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि बंदी भी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकें। बाहर से जेल में आने वाले परिजनों के लिए जेल प्रशासन की ओर से कड़ी चावल का लंगर भी लगाया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से परिजनों को सुविधा देने के साथ साथ आपसी भाईचारे और सेवा भावना का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन से पूर्व कल फरीदाबाद की तिरंगा गर्ल के नाम से मशहूर कुमारी सृष्टि गुलाटी ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दिल्ली स्थित उनके कक्ष में जाकर राखी बांधी। उसके साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। इस दौरान सृष्टि ने मुख्य न्यायाधीश को श्रीमद् भगवद गीता और राष्ट्रध्वज तिरंगा भी भेंट किया। राखी बांधने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने सृष्टि को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। नन्ही समाज सेविका सृष्टि गुलाटी अपनी सामाजिक गतिविधियों और तिरंगे के प्रति जागरूकता अभियानों के लिए फरीदाबाद में विशेष पहचान रखती है। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगाए गए अनुबंध कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 2 माह के लिए बढ़ा दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनात इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इनकी वर्तमान अनुबंध अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही थी। जींद पुलिस और जिला शिक्षा प्रशासन ने जींद के गांव कंडेला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी सहारन ने स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन और रागिनी जैसे सांस्कृतिक माध्यमों से नशे के खिलाफ सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। मीडिया से बातचीत में श्री कुलदीप सिंह ने बताया कि जींद पुलिस पिछले 3 वर्षों से लगातार नशा विरोधी अभियान चला रही है। अभियान के तहत अब तक 2 लाख से अधिक लोगों से सीधा संपर्क साधा जा चुका है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत पेश है फिल्म अनजाना से, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर ने, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए प्रस्तुत है फिल्म राखी से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल दिए हैं राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार है रवि।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
5: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
6: पर्दे पर भी किसने गाया है ये भी जरूर बताएं।
7: किस

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमीन को गले लगाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा के झोंके बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आप ही बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतज़ार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात है।

ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सके। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है? एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, या दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहाँ व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं। सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए।

एक श्रोता कह रही हैं कि रूह के किसी खामोश कोने में आज भी तुम्हारी सरगोशी की वह धीमी सी आहट गूंजती है जो हवाओं में घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है, क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

एक श्रोता हैं जो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्यौहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार है। एक श्रोता कह रही हैं कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी त्यौहार पर, सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फ़ोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्यौहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजनू सुल्तानपुरी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा ली है, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत पर किया है इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीत पर किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका. जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा. 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम. 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स. 2 लीटर एमिस्ट्रा टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी एक लकी ड्रॉ कूपन. आज ही खरीदो.
2: उन्हीं का आनंद लीजिए. हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं. हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर जरूर शामिल हुए होंगे. जी हाँ, आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि क्या था इसका उत्तर, कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री.

एक श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है, इसकी हार्दिक बधाइयां भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीज़ा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतज़ार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि सरगोशियाँ रूह और खामोशियाँ मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियाँ बंद जुबान की आवाज़ होती है, जब मन और रूह की आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल, अगला गीत इबारत में जो वाक्यांश हमने लिया है, मीरा मोहन सी सूरत, वो इसी गीत से है।

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफ़र आपने तय किया है पूजा नारायणिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, वंदे मातरम। इस रचना की 150वें वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति

0: इसी अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
1: वंदे मातरम, ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था, और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
0: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है, इसकी स्पष्ट कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
2: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे, तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी, या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
0: इस प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए, इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
2: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की

0: पुनः विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा इसका संदेह था, और ये संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
1: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए, इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4th मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों

0: ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
1: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंट डेवलपमेंटल स्टडीज में

0: महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है।

अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में

0: 85.69 मीटर भाला फेंककर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लोसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में पांचवा स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत सुनिए। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायर उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की
1: अगर

0: मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली। गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा। भोली पनी हारी बोली।

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में। भरत व्यास के बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राहा होता है। बहरहाल आपको हम बता दें, ही राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर सुरीला हो, इसका विविध भारती बाकायदा ख्याल रखती है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी बात है जहाँ पर साथ निभाने की बात है, तो सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। भरत व्यास ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा है और धुन बनाई है सरदार मलिक ने। और गाना सुनते हुए जरा याद कीजिएगा कि सरदार मलिक के सुपुत्र हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया में खूबसूरत संगीत दे रहे हैं। फिलहाल सुनिए ये गाना, फिल्म सारंगा।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में भरत व्यास के बोलते सरदार मलिक का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, आपको मालूम है हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं, और आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं, और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का, सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार, और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए आज का पहला कॉल, सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ।
1: मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है, हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय

0: कैसा है?
1: गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
0: क्यों, बारिश
1: बारिश
0: नहीं है वहां पर?
1: का नाम ही नहीं ले रही।
0: तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत
1: उमस
0: ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा मैडम जी।
0: अच्छा दक्षिणा जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैडम जी, मैं घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ।
0: तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं।
0: शूज बेचते हैं।
1: हाँ जी,
0: आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे
1: हाँ
0: हैं या
1: जी,
0: पति हैं?
1: हाँ जी, पति हमारा दो भी साथ ही रहता है।
0: अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं मैडम जी, मेरा साया फिल्म का,
0: मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो शैली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ, जिला
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: हिसार, उकलाना मंडी। जी
0: अच्छा, बताइए आप क्या
1: मैम।
0: करती हैं?
1: जी मैम, हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो दिन भर में कौन से काम हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं करने में?
1: तो मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी।
0: अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला, आपकी पसंद का काम जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं।
1: सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, गुजिया, गुलगुला, पकोड़े, यही सब
0: ये सब सर बारिश के
1: जी।
0: पकवान

0: जो आपने बताया ना, गुलगुले पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: जी मैम, पसंद तो किए जाते बारिश के महीने, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नागपंचमी नहीं थी, नागपंचमी 17 तारीख को, तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नागपंचमी, उसके बाद फिर रक्षाबंधन।
0: और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं?
1: जी मैम, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए, और वो करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं।
0: तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज आपने कौन सा गीत चुना है?
1: जी भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रक्षाबंधन के लिए।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुल्ला बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से।
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: मैं बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी,
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहाँ घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
2: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
1: जयपुर से?
2: और मेरा नाम कृष्णा सिंह। मैम,
1: कृष्णा सिंह, कृष्णा जी आप क्या करती हैं?
2: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ
1: जी।
2: मैम, सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल खिलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ।
1: अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
2: मैम, उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए

0: डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम,
1: हाँ जी,
0: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
1: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे, वो थोड़ा सा बदलाव लाके ज़िंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: खूबसूरत है वो इतना,
1: रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना।
0: जी मैम।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ मैम, थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर
1: जी
0: एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम,
0: वंदना जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं। बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियाँ अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम, और
0: अच्छा,
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम।
0: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है, और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
1: जी मैम,
0: तो बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
1: मैम रिम झिम बसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
0: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं,
1: जी मैम,
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। हाँ जी
0: हाँ जी नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं।
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ। मैम
0: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
1: जी, मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ। मैम
0: हाँ जी सुल्तानपुर से बात
1: मेरा,
0: कर रही हैं।
1: हाँ जी मैम, मेरा छोटा सा शहर है। मैम मैं ब्लाइंड हूँ मैम, बट
0: जी
1: जी मैम, और मैं बैचलर हूँ मैम, मैं
0: अच्छा
1: बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम, और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से, तो
0: जी
1: मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी, बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
0: अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
1: मैंने अवधी लोक गीत गाए थे मैम
0: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोकगीत।
1: जी मैम।

0: जी मैम, मैंने यही गाया था
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: जी।
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैम मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम में फिर से वक्त हो चला है एक अंतराल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री। देव

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
2: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
1: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहाँ से आप बात कर रही हैं?
2: हाँ दीदी।
1: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
2: हाउस वाइफ हूँ दीदी
1: जी,
2: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
1: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
2: जी दीदी।
1: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
2: दुकान पर वो तो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
1: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में। अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं?
2: दीदी मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है।
1: सेहतनामा अच्छा लगता है?
2: जी दीदी। जी
1: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
2: जी दीदी।
1: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
1: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
2: इसे समझो ना रेशम की डोर भैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया।
1: आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मढ़िया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं
1: मैं
0: धानेश्वरी जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और
1: मैं
0: आपने शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं। अपने बारे में बताइए
1: हाँ,
0: हमें।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: हाँ
1: घर में
0: जी
1: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
0: जी
1: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
0: हाँ,
1: हाँ, अब
0: आर्मी
1: मुझे
0: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे
1: जी,
0: शहरों में आप रही होंगी।
1: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ, अपने घर पे।
0: तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं।
1: जी, फिर रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
0: अच्छा, और इतने
1: जी
0: सारे शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा, तो कौन से
1: जी
0: शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
1: अच्छा, तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है,
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा था।
0: और आपके क्या-क्या शौक हैं?
1: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल अटकता है ना, पीला पीला दिखता है,
0: हाँ,
1: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके। जी
0: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक
1: जी
0: से, ये बहुत अच्छी है।
1: मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर से भी होता है ना,
0: जी
1: तो उसमें मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
0: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?

0: मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं।
1: जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत
0: हाँ,
1: सुनवाएं आपको?
0: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
1: और आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: सखी अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं?
1: फातिमा मनियार,
0: फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: नासिक महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं?
1: हाँ,
0: हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, इसमें
1: जी
0: प्लाजो भी
1: हाँ
0: होते
1: जी
0: हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं, और भी कई
1: जी
0: तरह
1: मैम
0: की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी मैम जी
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सिर्फ तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है
1: हाँ
0: आपको सुनवा रहे हैं, पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहां से आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपका शौक क्या क्या है?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और
0: जी
1: मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
0: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
1: हाँ जी, मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिसरे गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद से फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है, फिर
0: जी
1: 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
0: और बहुत सारे श्रोता
1: हाँ,
0: अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं। आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: मैं तो लिखती हूँ, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना, तो
0: जी
1: क्वेश्चन का के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देते हैं कभी कभी, कभी तो शामिल हो जाता, कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ, जैसे कि मैं अपने पीहर से काफी दूर हूँ, मेरा पीहर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ,
0: तो जब राखी का
1: तो
0: त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
1: बहुत बहुत मतलब सावन आते ही से समझे याद आ जाता पियर तो, और
0: और
1: रक्षाबंधन में तो बहुत मिस करती हूँ वहां पर जाना। तो मैं तो चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहां से दूर हूँ तो मैं यह गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ। चंदा रे भैया के ना, भैया के ना, बहना याद करे ओ चंदा रे।
0: भगवती जी, आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील।

0: रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी 7वें आसमान पर बैठी हूं। मतलब हद होती है भाई। पता है, एक तो मैं यहां पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूं, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूं। मुझे मालूम था यहां का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो, कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहां सुकून मिलेगा।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब, उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

0: जरा।
1: हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूं जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहां यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा। पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी, तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूं उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूं, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं, संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हां कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूं, पर अब और नहीं। मैं यहां जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूं क्या जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रखकर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूं, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच में।

ये देखो, यहां मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, बड़े स्टाइल में, आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा।

पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं, और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म के हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताए दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा

बदला, अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था। एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था। और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये

सिया, हाँ पीछे देखो जरा, पीछे क्यों, क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यहीं थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहाँ रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी, पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा, और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूं सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहां एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है, तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा, अभी तो कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

पूरे साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलट कर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने थोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है?

मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान। मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो, मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा। क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े। तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा, छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसलकर जा रहे इस लम्हे में है सिया, मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: वार्याशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है जो अन्य देशों के नागरिक हैं। श्री जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। श्री जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामती के बारे में नई जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों भी कम होने लगी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ोयोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य

0: मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: पेशे फिल्म संगीत और पहला गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है मेजर साहब।

अभी आप सुन रहे थे शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम था यहाँ। आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और अगला गीत है शिल्पा राव और साथ ही कलाकारों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कॉकटेल 2।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप का स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को यह समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर

सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना, मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश अगला स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: Zubani,
1: Gems of India Challenge.
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश है अगला स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
3: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
3: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
3: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
3: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
3: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
3: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
3: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
3: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
3: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है।

0: इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर
0: जी,
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे
0: जी,
1: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए
0: जी,
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
0: श्रोताओं, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है
0: जी।
1: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए
1: जी।
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओं, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता
1: जी।
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है
4: पिताजी।
3: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
5: पिताजी ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
6: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
4: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
4: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं
4: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता।

0: और वो है बुद्धिमत्ता।
1: जी पिताजी।
0: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
1: जी पिताजी,
2: हम प्रयास करेंगे।
3: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
4: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
5: हाँ, तुम ठीक कहते हो भैया। तो क्यों ना हम एक काम करें।
1: भला वो क्या?
4: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
5: हाँ, ये ठीक रहेगा भैया।
3: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
4: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
6: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेंद्र?
1: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
3: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
4: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
1: हाँ,
6: आपका ऊंट खो गया है ना?
1: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
7: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
4: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
7: है?
4: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
7: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
1: नहीं नहीं,
7: अरे
1: नहीं,
7: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
5: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
7: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
4: नहीं,
7: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
4: वो
7: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
4: लेकिन
7: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
4: क्या?
7: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
4: क्या कह?
3: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
7: मुझे कुछ नहीं सुनना।
5: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
7: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
3: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
7: अब तुम सब राजा के पास चलो।
8: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
4: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
9: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
8: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
9: तुम लोगों को कुछ कहना है?
10: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
9: अच्छा, तो ये बात है।
10: जी,
9: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
11: जी महाराज।

0: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
1: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
2: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
3: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
0: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
4: खाइए खाइए, लीजिए।
5: महाराज,
6: धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
1: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
4: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
3: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
2: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
1: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
1: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
3: महाराज, वहां पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
1: क्या बात है?
4: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
1: अच्छा,
4: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
1: जी बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
2: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
1: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
3: धन्यवाद महाराज।
4: महाराज, शुक्रिया महाराज।
1: मैं सचमुच चकित हूँ।
4: जी महाराज।
0: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।
8: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
9: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
8: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
9: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
8: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह

0: लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
1: सरला बेटी।
2: अरे बाबूजी, आप
3: कहां खोई हो बेटी?
2: आप
3: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
2: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूँ?
2: जी
3: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
2: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
3: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
2: अच्छा,
3: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
2: पर
3: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
2: लेकिन बाबूजी मैं धन्यवाद बाबूजी।
3: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद सर।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
2: हाँ, जी सर। सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
2: सर, मैं बताऊँ?
4: हाँ, सरला तुम बताओ।
2: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
2: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
5: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
8: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी

0: परेशान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
1: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
2: हजार घंटों की ट्रिप करे रहते हैं सिद्धि।
3: I think she lays it. Take off was so nice.
4: Even the flight is very stable.
2: Really?
4: Amazing.
5: Sarla, turn the aircraft to your left. Yes, and immediately to the right. Over.
6: Okay, sir. Over.
5: Now, increase the altitude and descend smoothly thereafter. Over.
6: Yes, sir. Over.
5: Good. Now, descend to the ground. For landing. Over.
6: Copy, sir. Over.
7: लैंडिंग
8: कमाल।
9: थैंक यू
10: बहुत सर लगी है।
9: थैंक यू, धन्यवाद।
10: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए।
9: अमेजिंग।
1: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
0: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
1: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
0: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
1: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
0: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
1: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
11: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
1: भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
12: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
13: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
12: नमस्कार।
14: उमंग उमंग उमंग उमंग।
15: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र ते हुण तक जी पलां च आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार रिले किते जाणगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो के अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान राजा हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में

0: मिथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 MHz ते।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੀਤ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਂਖੇਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ FM 107.2 MHz 'ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेरती से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 12 वर्ष पूरे किए। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रखड़ पुनिया के मौके पर अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए और लंगर हॉल में सेवा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा बकाला साहिब में दावा किया कि भाजपा की सत्ता में आने पर पंजाब की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। भाजपा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा की सत्ता में आने पर सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। हरियाणा में आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जेलों में भी बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाता खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि लगभग 56% खाता धारक महिलाएं हैं। जनधन खाता धारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखड़ पुनिया के मौके पर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और लंगर हॉल में सेवा की। मीडिया से बातचीत में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब की इस पवित्र धरती पर आने का मौका मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है।
2: सचमुच में आज का दिन मेरे जीवन के बहुत सौभाग्य का दिन है। आज हरमंदिर साहब में मत्था टेकने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ मैंने सेवा भी की, सेवा का भी अद्भुत आनंद है। और वहाँ ये प्रार्थना की, क्योंकि गुरु घर में सारी दुनिया एक, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब बराबर है। सारी दुनिया के लिए वो द्वार खुला है। हमने प्रार्थना की कि नेपाल के हमारे वो भाई बहन जो अभी लापता है वो सुरक्षित अपने परिवार में लौटे।
1: उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वे किसानों से बातचीत करेंगे और बाद में रखड़ पुनिया से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाबा बकाला साहिब जाएंगे। एक सवाल के जवाब में श्री चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण की कोशिशों में बाधा डाल रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से महिला आरक्षण से जुड़े उपायों को समर्थन करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रखड़ पुनिया मेले के दौरान बाबा बकाला साहिब में भारतीय जनता पार्टी के मंच से दावा किया कि भाजपा की सत्ता में आने पर पंजाब की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए प्रदेशवासियों से बदलाव के लिए भाजपा का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब परिवारों के पक्के मकान के लिए पैसा भेजती है, लेकिन पंजाब सरकार योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाती। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने पर प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा,
2: गुरु तेग बहादुर जी की तपस्या स्थली पर

0: आके हमारा जीवन भी धन्य हो गया है और बीजेपी ने भी आज इतिहास रचा है। पहली बार रक्षक पूर्णिया के मेले में आज भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही है। ये सभा नहीं है, ये संकल्प है विकसित पंजाब के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प आज हम यहाँ ले रहे हैं और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन हमारे साथ खड़ी है।
1: भाजपा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अमृतसर जिले के बाबा बकाला साहिब में रक्खड़ पुन्या मेले पर भारतीय जनता पार्टी के महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मंच से दावा किया कि भाजपा की सत्ता में आने पर पंजाब के माझा क्षेत्र में सरहद से नशों और हथियारों की तस्करी को रोका जाएगा और सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
2: पंजाब लई आज इकट्ठे हो के जिम्मेवारी दा प्रण लेन सी इत्थे आए हैं, जिथे पंजाब दी आस्था दी रक्षा होवे, जिथे किसान दी मेहनत दी रक्षा होवे, जिथे पंजाब दे नौजवाना दे भविष्य दी रक्षा होवे, जिथे भैणा ते धीआं दे सत्कार दी रक्षा होवे, देश दी सरहद उत्ते वसदे समाज दी सुरक्षा होवे, इहो अज भारतीय जनता पार्टी दा प्रण है।
1: श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों से समर्थन मांगते हुए कहा,
2: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਹਰਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਬੜਨਾ ਪਊਗਾ।
1: ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਕੋ ਅਧਿਆਤਮ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਤਾਇਆ।
2: ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਦਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ।
1: मुख्यमंत्री अपने संबोधन के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर रहे और उन पर वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। बहनों ने भाइयों को राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में संत कबीर कुटी पर स्कूली छात्राओं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी भी उपस्थित रहीं। रक्षाबंधन के पर्व पर आज जींद जिला कारागार में बंद अपने भाइयों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। जेल प्रशासन द्वारा बहनों के लिए कारागार परिसर के भीतर इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। बहनों से राखी बंधवाने के बाद भाइयों ने भी अपनी गलतियों पर पश्चाताप जताते हुए जिंदगी भर अपनी बहनों के सम्मान और रक्षा का वचन दिया। जेल अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया,
3: आज जो है विशेष तौर पर जो है जो हमारी जो बाहर से बहनें आई हैं उनके लिए विशेष तौर डोडी में जो है राखी बांधने का प्रबंध किया गया कि वो फेस टू फेस देख सके और महानिदेशक कारागार के आदेश अनुसार जो है राखी भी और जो मिठाई है वो भी जेल द्वारा प्रोवाइड कराई गई है और बाहर जो है उनके परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था की गई।
1: कैथल में भी रक्षाबंधन के अवसर पर जिला कारागार में भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उनके सुखद भविष्य की कामना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें जेल परिसर में प्रवेश दिया गया। जेल प्रशासन की ओर से परिसर में ही राखी, रक्षा सूत्र, तिलक और मिठाई की व्यवस्था की गई। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 12 वर्ष पूरे किए। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्खड़ पुनिया के मौके पर अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए।

और लंगर हॉल में सेवा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा बकाला साहिब में दावा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर पंजाब की तस्वीर और तकदीर बदलेंगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक विकसित पंजाब तो बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि मावां धियां सत्कार योजना तहत पंजाब दियां 5 लाख तो वध लाभपात्रियों नूं माली लाभ मिलेगा। सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम की कंध 1.77 इंच झुकी होने दे सोशल मीडिया से चल रहे एक जाली वीडियो का खंडन किया है कि डैम पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार का कहना है कि देश च प्याज ते खंड की कोई कमी नहीं, कीमतों नूं स्थिर रखने लई यतन जारी। ते अज देश भर विच रखड़ी का त्यौहार खुशियां ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी किसान भलाई ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब दे किसानां नूं भरोसा दित्ता है कि केंद्र सरकार उनां दे हितां नाल समझौता नहीं करेगी अते किसी भी देश नाल कीते गए हर समझौते नूं उनां दी भलाई नूं पहल देके कीता जाएगा। अज बाबा बकाला विखे रखड़ पुन्या समागम दौरान किसानां ते होरनां नूं संबोधन करदिआं उनां कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विरोधी पार्टियां झूठे बिरतांत फैला रहीआं ने कि केंद्र सरकार किसानां दे हितां दे विरुद्ध समझौते कर रही है पर अजिहा नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र यह यकीनी बनाने लई वचनबद्ध है कि किसानां नूं अपनियां भलाई स्कीमां दा लाभ मिले।
3: कई लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों से हमारे कोई समझौते हो रहे हैं तो इसमें किसानों को अहित होगा। मैं आज पंजाब की इस पवित्र धरा से किसान भाइयों आपको ये संदेश देने आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं देश प्रथम और किसान के हित सर्वोपरि। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए दुनिया के किसी देश से ऐसा समझौता नहीं हो सकता जो किसान के हितों के खिलाफ जाए। मोदी जी ने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े लेकिन किसान के हितों को कोई छू नहीं पाएगा।
2: केंद्रीय मंत्री ने खास तौर ते पंजाब सरकार ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY लागू ना करन दा इल्जाम लाया जिस नाल पिछले साल सूबे विच आए हड़त प्रभावित किसानां नूं मुआवजा मिलदा। उन्हां कहा कि देश दे 23 राजां ने योजना लागू कीती है पर पंजाब सरकार अजिहा करन विच नाकामयाब रही है।
3: मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, भगवंत मान जी आपको जवाब देना पड़ेगा, पर मैंने कहा पंजाब की धरती पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं की है, आप लागू कीजिए ताकि किसान को उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। भारत के 23 राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है लेकिन भगवंत सिंह मान आपने आज तक फसल बीमा योजना लागू नहीं की।
2: श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब अते इस दे किसानां दी तरक्की लई सब कुछ कर रही है।
3: भारत सरकार ने की योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
2: खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि देश विकसित पंजाब तो बिना विकसित

0: 107.2 MHz ते।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: ते हुण ते थोड़ी ही देर च तुसी सुनोगे प्रोग्राम जयमाला, जो विविध भारती दे मुंबई केंद्र तो रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, हम हिंदुस्तानी फिल्म से मुकेश और साथियों की आवाजों में प्रेम धवन के बोल उषा खन्ना का संगीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नौकरी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में शैलेंद्र के बोल सलील चौधरी का संगीत।

छोटे से घर की छोटी सी आशा के बाद आइए सुनते हैं इस दुलारे मुन्नी की कहानी मुसाफिर फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

अगला गाना सुनते हैं जूल थीफ इस फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: कुछ दिल ने कहा,
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदो।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: जयमाला बाकी कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना द बर्निंग ट्रेन इस फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना तीसरी मंजिल फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव। सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आज सुनिए एक झलकी, शीर्षक है कभी ऐसा भी होता है, लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामल मीत।
1: आइए आइए समीर जी। नमस्कार।
2: नमस्कार जयदेव जी, कहो क्या हालचाल है।
1: ओ जी, हमारा हाल तो तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए तुम्हारे रास्ते में ही पावड़े बिछाए बैठे हैं।
2: जयदेव जी, इतनी हवा मत भरो कि टायर ही फट जाए।

0: अरे किसी भी घर में बिचौलिए का आना शुभ शगुन माना जाता है। शुक्र है जो तुम हमारे घर पधारे।
1: क्या करें जयदेव जी, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। ढंग का रिश्ता भी तो बड़ी मुश्किल से मिलता है आजकल।
0: हाँ वो तो है। संगीता, संगीता बेटी, देखो तो कौन आया है।
2: अंकल जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी, कहो कैसी हो।
2: अंकल जी हम तो सब ठीक हैं, पर हमारी भाभी का क्या हुआ?
1: संगीता बेटी, आजकल सबसे पहले बहू का पर्स देखना पड़ता है, जबकि किसी के पर्स को सोच समझ कर ही हाथ लगाया जा सकता है।
2: अंकल जी वक्त के साथ तो चलना ही पड़ता है। अच्छा मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, पर भाभी का समाचार जरूर सुनाना।
1: तुम चाय लेकर आओ, शायद अजय के रिश्ते की खबर भी सुनने को मिल जाए।
2: मैं अभी आई अंकल जी।
0: सुमेर सिंह, कहो क्या खबर है। बहू की खबर सुनने के लिए तो मेरे कान भी बड़े बेताब हैं।
1: अपने बैल की अच्छी कीमत वसूल करने के लिए हर मालिक बेताब होता है।
0: देखो सुमेर, तुम कैसी बातें कर रहे हो। संगीता का भी कहना है कि वक्त के साथ ही चलना पड़ता है।
1: अपने यार का बेटा तो अपना बेटा है, इसलिए दौड़ धूप करके एक शिकार फांस ही लाया।
0: अच्छा तो फिर कब लड़की देखने चलें?
1: लड़की देखने? जयदेव तुम ये क्या कह रहे हो।
0: तो क्या लड़की देखे बिना ही अजय का रिश्ता करोगे।
1: लड़की देखने की बात मैंने भी लड़की वालों से कही थी।
0: तो फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया।
1: उन्होंने कहा कि पहले लड़की देखकर या लड़का देखकर क्या करेंगे, पहले ये बता दो कि लड़के वालों के हाथ में भीख के कटोरे का क्या साइज है।
0: यार वो तो बड़े ही दिलचस्प लोग हैं। क्या उन्होंने वाकई यही कहा था।
1: सच यही कहा था।
0: तो खैर वो हमारी मांग को कटोरे से नापें या कटोरी से, हमारा तो मकसद पूरा होना चाहिए।
1: वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अब तक वो अनेक लड़के देख चुके हैं। लड़के देखने में ही उनका 20-25 हजार खर्च हो चुका है।
0: अच्छा, अरे भाई जो लोग लड़के देखने पर ही इतना खर्च कर सकते हैं, वो टीका, सगाई और शादी पर कितना खर्च करेंगे।
1: मजबूरी का नाम शुक्रिया है, मतलब के सामने झुकना पड़ता है। देखने दिखाने के चक्कर में उनको लड़के वालों की आवभक्त करनी पड़ती है। लड़की भी पसंद कर लेते लेकिन लेने देने पर आकर बात टूट जाती। अब तो लड़का देखने या लड़की दिखाने से दुखी हो चुके हैं।
0: क्यों क्यों, ऐसी क्या बात है।
1: क्योंकि लड़के वालों का लालच इतना बढ़ गया है कि शायद भिखारी भी मांगता हुआ कुछ शर्माता होगा, लेकिन लड़के वाले मांगने से जरा भी गुरेज या शर्म नहीं करते।
0: देखो यार, हम शादी करने लगे हैं और तुम हम पर ही व्यंग बाण चढ़ाने लगे हो।
1: मैं तुम्हारी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उनको ठुकरा कर चले गए।
0: फिर ठीक है।
1: भला तुम ऐसे कहाँ हो, तुम तो एकदम दूध के धुले हो।
0: अच्छा अच्छा, अब रिश्ते की बात को आगे भी बढ़ाओगे या फिर कांटों पे ही घसीटते चले जाओगे।
1: लड़की वालों ने कहा है कि पहले लड़के वालों की मांग की पूरी सूचना उन्हें दो, उसके बाद ही वो आगे बात बढ़ाएंगे।
2: लो अंकल जी पहले चाय पीजिए आप, फिर रिश्ते की बातें करना।
1: ओ बेटी तुम तो बहुत सी चीजें ले आई।
2: अंकल जी बिचौले की सेवा नहीं करेंगे तो फिर मेवा कहाँ से खाएंगे।
0: अरे बेटी मेवा पाने का वक्त भी आ गया है।
2: लगता है अंकल जी कोई रिश्ता ले ही आए हैं। अब
1: लड़की वालों ने कहा है कि किसी तरह की बातचीत शुरू करने से पहले उन्हें तुम्हारी मांग के बारे में पता चल जाए तो ठीक है।
2: ये वाकई एकदम मॉडर्न लोग लग रहे हैं। बात है भी ठीक, लेने देने की बात तय हो जाए तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा ना।
0: सामान नकदी वगैरह के बारे में बेटी तुमने एक लिस्ट बनाई थी ना, वो यहीं ले आओ।
2: पापा वो लिस्ट तो मैं हर वक्त अपने पास ही रखती हूँ, ना जाने कब कोई मुर्गी फंस जाए।
1: माँ बेटी संगीता भी वक्त की नस खूब पहचानती है।
2: ये लो अंकल जी।
0: देखो सुमेर, पिछले हफ्ते ही हम सबने बैठकर चीजों की लिस्ट तैयार कर ली थी।
1: अरे ये चीजों की लिस्ट है या थोक की दुकान का बिल।
2: अंकल जी भैया जी की शादी करनी है, कोई गुड्डे का विवाह तो नहीं है।
0: और सुनो बेटी जरा इसे पढ़ भी दो, कहीं कोई चीज रह न गई हो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी।
2: इसे पढ़ने में तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा पापा जी।
1: चलो शुरू की खास खास चीजें पढ़ दो। ये संख्या 111 पर क्या लिखा हुआ है।
2: ये हाँ लिखा है, अगर लड़की के नाम किसी बड़े शहर में मकान या प्लॉट है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फेरे होने से पहले

0: व्यवस्था करने से रिश्ता तय करने में आसानी रहेगी।
1: मेरा ख्याल है ये मांग तो आप लोगों की अनुचित ही मानी जाएगी। खैर कोई बात नहीं,
2: कहो तो इसे काट दें। वैसे ये मांग अनिवार्य सूची में नहीं आती, अगर पूरी हो सके तो अच्छा ही रहेगा।
1: शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, लड़की वाले पहले अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं। वो भी चीजों की लिस्ट तैयार कर रहे थे, मकान या प्लॉट की मांग उन्होंने भी लिस्ट में लिखी है, इसलिए तुम क्यों ना लिखो।
2: ठीक है,
1: सब तरफ एक ही हवा चल रही है।
2: अरे भाई हम भी तो बेटी बेटे की शादी एक ही वक्त में करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटी संगीता के रिश्ते के बारे में मेरा एक दूसरा मित्र भी आने ही वाला होगा।
1: ये आपने ठीक सोचा, एक ही खर्च में दो शादियां निपट जाएंगी। ठीक है, मैं ये लिस्ट लड़की वालों को दिखाकर खोटे पैसे की तरह लौटा।
0: पापा अगर आप कहें तो ये लिस्ट मम्मी को एक बार फिर दिखा दूं मैं।
1: ठीक है, तब तक हम 10 मिनट के लिए बाजार हो आते हैं, एक जरूरी दवाई लेनी है, 1 बजे केमिस्ट की दुकानें बंद हो जाएंगी।
2: और देखो बेटी हम आधे घंटे तक लौट आएंगे, एक बहुत ही खास मेहमान भी आने वाला है, हमारे आने तक उसे ध्यान से बिठाना और चाय वाय पिलाना।
0: ठीक है पापा।

0: नमस्ते बेटी।
1: नमस्ते अंकल, कहिए किससे मिलना है?
0: क्या जयदेव जी घर पर ही हैं?
1: आप बैठिए, वो थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
0: नहीं बेटी, मैं चाय नहीं पीऊँगा, अभी अभी कहीं से पी कर आया हूँ, वैसे भी मुझे जरा जल्दी है।
1: पापा जी भी जल्दी ही आने वाले हैं।
0: देर हो गई तो फिर मेरी गाड़ी निकल जाएगी।
1: आप किसी रिश्ते के संबंध में आए हैं ना?
0: बेटी तुम्हारा नाम ही संगीता है।
1: जी अंकल।
0: अब पुराना जमाना तो रहा नहीं कि रिश्ते के बारे में लड़की लड़के से भेद रखकर बात की जाए। मैंने तुम्हारे रिश्ते के बारे में ही कहीं बात चलाई है, पर लड़के वाले कहने लगे कि लड़की लड़के की देख दिखाई करने से पहले उनकी मांग की ये लिस्ट आप लोगों को दिखा दूं।
1: अच्छा, आप भी लिस्ट ले आए? क्या मैं जरा देख सकती हूँ? मम्मी पापा भी आने ही वाले हैं।
0: हाँ क्यों नहीं बेटी, आखिर रिश्ता भी तो तुम्हारा ही हो रहा है। अगर अपने सामान के बारे में लड़की को जानकारी नहीं होगी तो उसका क्या फायदा?
1: हाँ देखूं, ये अंकल, ये लोग तो बहुत लालची नजर आते हैं। भला इतना सारा सामान, नकदी और ना जाने क्या क्या, किस लड़की के माता पिता दे सकते हैं इतना भला?
0: इसीलिए तो मैं आया हूँ, अगर जयदेव जी को उनकी मांगे पूरी करनी होगी तो रिश्ता तय कर लेंगे, नहीं तो वो अपने घर और आप अपने घर।
1: हेलो, पापा जी भी आ गए।
2: अरे यार मोहनलाल।
0: हाँ जी,
2: आ गए।
0: आ गए।
2: अरे भाई, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। कुछ खाया पिया भी या?
1: पापा, इन्होंने कुछ भी लेने से मना ही कर दिया।
2: अरे क्यों, खाकर आए थे क्या? खैर मोहनलाल जी, ये है मेरे परम मित्र श्री सुमेर सिंह जी, जो मेरे बेटे अजय का रिश्ता कर रहे हैं। और सुमेर सिंह जी, ये हैं मेरे घनिष्ठ मित्र मोहनलाल जी, जो मेरी बेटी संगीता का रिश्ता ला रहे हैं।
3: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।
2: अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा रहा कि आप दोनों बिचौलियों की मुलाकात हो गई।
3: मोहनलाल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लड़का लड़की देखने से ये लेने देने की बात पहले तय करते हैं, इसलिए जयदेव जी से सामान की लिस्ट लेने आया था।
0: और मैं इन्हें लड़की के रिश्ते के संबंध में लड़के वालों की मांग की लिस्ट दिखाने आया हूँ।
3: अच्छा अच्छा, मोहनलाल जी।
0: हाँ जी।
3: आप अजय का रिश्ता कहाँ कर रहे हैं?
0: पपरोला में।
3: पपरोला में? किसके घर?
0: लाला दुनीचंद जी है ना। हाँ। उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है मेन बाजार में।
3: क्या उनका घर मंदिर के पास तो नहीं?
0: अरे आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है। और आप जयदेव जी के बेटे का रिश्ता कहाँ कर रहे हैं?
3: लाला दूनी चंद की लड़की को ही तो मैं इनके बेटे का रिश्ता करना चाहता था, लेकिन अब तो
1: पापा जी, मैं ऐसे भूखे लोगों के घर में कतई नहीं जाऊंगी। उनकी दहेज की लिस्ट देखकर मेरा तो सर ही घूम गया। आप पढ़ेंगे ना तो पागल ही हो जाएंगे।
3: बेटी संगीता, इसी को तो कहते हैं घर लगी आग बाहर लगी बसंतर। जबकि तुम खुद अपने हाथ से अपने भैया के दहेज की लिस्ट बना रही थी, 130 चीजें लिखने

0: के बाद भी तुम्हें, तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पापा को लिस्ट छोटी लगती है।
1: अंकल, मैं तो कभी भी दहेज के पक्ष में नहीं रही, पर मेरे घर वालों को वो लड़का अच्छा ही नहीं लगता ना, जो बिना दहेज के विवाह करना चाहता हो।
2: पर बेटी, उस लड़के से हम तुम्हारा रिश्ता कैसे कर सकते हैं जो
1: क्या क्या जो, क्योंकि आप अंतरजातीय रिश्ते के पक्ष में नहीं, चाहे लड़का कितना गुणवान हो।
3: और हमारी इन्हीं घिसी पिटी धारणाओं के कारण ही तो दहेज रूपी राक्षस की बलि वेदी पर हजारों सुकुमारियां चढ़ रही है।
2: दहेज की लंबी लिस्ट तभी जल सकेगी जब हम अंतरजातीय विवाह की शरण में जाएंगे।
3: और सुमेर सिंह जी, ये कैसा संयोग है कि दोनों लिस्टें एक दूसरी से सिर के बल टकरा गई।
4: मोहनलाल जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच्चाई से सच्चाई इस रूप में टकराती है कि उसका गला घोटने वाले मुंह के बल गिरते हैं।
2: हाँ, जैसे मैं और दुनी चंद जी गिरे हैं। हाँ भाई,

कभी ऐसा भी होता है। अभी आपने ये झलकी सुनी, इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामल मीत।

వందే మాతరం. ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा. स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी.

0: तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नील अन्नी की इस फिल्म के गाने के साथ। सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन और डोमिनिक सेरेओ की आवाजों में, अन्विता दत्त के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं आजा नचली इस फिल्म से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना धड़क फिल्म से। अजय गोगावले की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए संतराल के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना ओके जानू इस फिल्म से एआर रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाज में, गुलजार के बोल एआर रहमान का संगीत।

आप सुन रहे थे ओके जानू, इस फिल्म से ये गाना। अंतराल के पहले आपने सुना कलंक फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में प्रीतम का म्यूजिक और लिरिक्स थे अमिताभ भट्टाचार्य के। इन्हीं के लिरिक्स में लिखा अगला गाना सुनते हैं, धड़क फिल्म से अजय गोगावले की आवाजों में अजय अतुल का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चलते चलते फ्राइडे नाइट की वाइब सेट करते हैं कॉकटेल 2 के फिल्म के इस गाने के साथ, प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में। इनका साथ दिया है शिल्पा राव और आरवन ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का कॉकटेल 2 से ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले।

0: उनका हालचाल पूछा और हमारी एमएससी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली वन, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
1: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
8: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।

0: प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
2: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
3: भारत सरकार ने जो योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान

0: औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
1: जून में आईआईपी वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार आईआईपी सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से। ये गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना जो जीता वही सिकंदर इस फिल्म से। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: रुकना तो हम चाहते हैं, लेकिन वक्त हो चला है अलविदा लेने का। अगली मुलाकात के वादे के साथ दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत। आज का आपके लिए कार्यक्रम होता है संपन्न। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: अनमोल खजाना, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
2: संगीतकार खयाम,
3: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

का साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੀਤ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਸਾਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਵਕਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

हुणे तुसीं सुन रहे सी गीत सविता सुमन मनमोहन सिंह ते साथी कलाकारां दीआं आवाज़ां च। ते इस गीत दे नाल ही अज दा प्रोग्राम सुरसांझ हुण खत्म हुंदा है। नमस्कार, रब राखा। आकाशवाणी दा चंडीगढ़ केंद्र है एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। ते हुण कुछ ही पलां च आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों हिंदी समाचार रिले कीते जाणगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित

0: सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 15 सैकेंड होए ने। हुण साडी अज दी सभा इत्थे ही खत्म हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल